सयान जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। आप कहीं भी रहते हो, कितने भी काल के लिए आप वृंदावन आते हो, पर यहां पर उपासक बनकर रहिए, यहां पर साधक बनकर रहिए। भजन रसमयी विपिन धर समझ बसे जो कोए, प्रेम बीज तिही खेत ते तब ही अंकुर होए। और समय रहते चेत जाइए, सबसे अमूल्य निधि, सबसे अमूल्य संपत्ति आपका जीवन है। और जीवन क्या है? जन्म से मृत्यु के बीच के समय को ही जीवन कहते हैं। ये समय आपकी संपत्ति है, इसका सदुपयोग करिए। इसका कुछ हिस्सा अवश्य भगवत भजन में लगाइए, इसका कुछ हिस्सा अवश्य आत्मचिंतन में लगाइए। नहीं तो भाई यही झांकी है कि हो अति दीन महा दुख पावत और लोग कुटुंब को न मुंह लावत। बड़े बड़े घरों में देखा है भाई मैंने कि जो घर के वयोवृद्ध जन होते हैं वो घर के एक कोने में पड़े रहते हैं, कोई उनके निकट भी नहीं जाना चाहता। उस वृद्ध व्यक्ति को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, भोजन वो अब अधिक कर नहीं सकता, वस्त्र आभूषण का कोई सुख रहा नहीं। उस वृद्ध को तो केवल इतना चाहिए कोई दो घड़ी उसके उसके पास बैठकर प्रेम से बात कर ले, और वो दो घड़ी प्रेम से बात करने वाला कोई नहीं होता। और जीव अपनी दुर्दशा का विचार करके रोता है, पर अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब रसना थकी न बोलो जाई, जब ऐसी स्थिति आए तब इसका विचार करने का क्या लाभ है। मैं भाई बल देकर एक बात कहा करता हूं, सही निर्णय तभी सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। अगर समय चूका तो कितना भी सही निर्णय क्यों ना हो, भजन करने से ज्यादा सही निर्णय कोई नहीं है। लेकिन समय चूक जाने पर यदि आप भजन करना आरंभ करते हैं तो उसका वो लाभ नहीं होता जो होना चाहिए। और कोई कहे कि भाई आप संत लोग कहते हैं कि अंत समय भगवान नाम का स्मरण करने से गति हो जाती है, अरे गति तो हो जाती है, गति तो हो जाती है। अरे ये जीवन मिला इसका सुख तो पाते, इसका आनंद तो लेते, ये जीवन का एक एक दिन सुख स्वरूप हो जाता, जीवन का एक एक क्षण उत्सव स्वरूप हो जाता यदि समय रहते चेत जाते, समय रहते गुरु के चरणों से लगकर और भगवत भजन करना आरंभ कर देते। नहीं तो भाई गलितम मुंडम शंकराचार्य कहते हैं ना, अरे मूढ़ मती, जब समय चला जाएगा मुख में दांत नहीं रहेंगे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएंगी, तेरा कोई अपना तेरे निकट नहीं आएगा, क्यों उस समय की, क्यों उस अपनी दुर्दशा की प्रतीक्षा करता है।

और फिर कहते हैं मेरी बात सुहात न काहू ताते उपजत है उर्दाहू। अब मेरी बात भी किसी को नहीं सुहाती और अपनी ये दुर्दशा देखकर मेरा हृदय और जलता है, ताते उपजत है उर दाहू। और ऐसे भयंकर दुख की स्थिति में भजन होता है? सुख में प्रभु भूल जाते हैं, दुख में भजन होता नहीं।

अभी संभल जाइए भाई, मत आने दीजिए जीवन में वो कठिन समय। पकड़िए प्रभु के चरण। संसार को अपना समझने की भूल हमसे आज तक हुई है, और ये जितना दुख जीवन में है ये उसी भूल का परिणाम है। और मैं साथ साथ कहता चलूं, लड़ झगड़ मत पड़ना किसी से, बस केवल इस बात को समझ लेना, संसार में जितनी आशा है, अच्छा आशा अपने से ही तो होती है, पराए से कोई आशा नहीं, पराए से कोई आशा नहीं। और संतों का सिद्धांत है, आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। कई बार आपसे मैंने कहा, भाई संसार से सुख की आशा का नाम ही दुख है, और सुख की आशा किससे होगी, जिसे आप अपना समझेंगे। एक बार अपना प्रभु को समझ कर देखिए, सुख की आशा पूर्ण हो जाएगी, सदा सदा के लिए पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए व्यास जी ने समझाया था, व्यास राधिका रमण बिन कहूं न पायो सुख।

तन बलहीन हुआ, बुद्धि कार्य नहीं करती, दो पग चलने के लिए भी मैं आश्रित हूं, झूठे कुटुंबी के रंग भीनो और सांचे प्रभु सो चित नहीं दीनो। जो वस्तुतः अपना था, जो जन्म जन्म का साथी है, उसके चरणों में कभी चित्त नहीं दिया और बस इसी झूठे संसार के रंग में रंगा रहा। रोगी कह रहा है, कहां लग कहूं मूर्खता अपनी, अब मैं अपनी मूर्खता कहां तक कहूं। ढक लिया जैसे जैसे माया ने मेरे मन बुद्धि को, आवरण पड़ गया मेरी बुद्धि पर और मैं सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाया, मैं सही समय पर सही दिशा में पग आगे नहीं बढ़ा पाया। नयन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत, बुद्धि घटी तन गति लटी। पर सबसे महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, तृष्णा को नहीं अंत। अच्छा, एक ये भूल भी न करना कि आपको लगे कि वृद्धावस्था आने पर विषय से अरुचि हो जाती है। महाभारत में भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान दे रहे हैं और उस समय महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, विषय की वासना यौवन के काल में इतना पीड़ित नहीं करती जितना वृद्धावस्था में करती है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि पितामह, ये आप क्या कह रहे हैं, जब जब शरीर अशक्त है तो विषय में रुचि कैसे होगी। बहुत लोग ऐसा प्रयास करते हैं, भोजन कम कर देंगे और जाने कई कई साधन करते हैं कि मन से विषय की रुचि घट जाए। रस बल छूटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। हरि के भजन के अतिरिक्त मन को विषय से हटाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, कोई साधन कुछ नहीं कर सकता, अंत में सब असफल है। तो महामहिम कह रहे हैं कि धर्मराज, मेरे जीवन का अनुभव है, वृद्धावस्था आने पर तृष्णा और बलवती होती है और अधिक दुखदायी स्थिति क्या होती है कि युवावस्था में तन में और मन में बल और शक्ति रहती है, इंद्रिय निग्रह करना सरल है, लेकिन वृद्धावस्था में तो तन अशक्त हो जाता है, बुद्धि कार्य नहीं करती और कभी कभी कभी कभी व्यक्ति इस बढ़ी हुई तृष्णा के कारण दुस्सह दुख पाता है। इसलिए स्वयं को सुधारने का, स्वयं को संवारने का और मैं कहूंगा स्वयं को सजाने का जो श्रेष्ठ काल है वो यौवन का काल है। युवावस्था में तो श्रृंगार अच्छा लगता है, बहुत छोटा सा बालक श्रृंगार करे तो भी अच्छा नहीं लगता, वृद्ध श्रृंगार करे तो भी संसार उपहास करता है। श्रृंगार कब अच्छा लगता है, जब युवावस्था होती है। ऐसे ही भक्ति क्या है, ये उर अंतर का श्रृंगार है, भक्ति जीवात्मा का श्रृंगार है। तो जब जब तन पर यौवन हो उसी काल में भजन करिए, उसी काल में हरि की भक्ति करिए। मैं तो कई बार कहता ही हूं ना आपसे कि भक्ति जीव को सताती नहीं है, भक्ति जीव को सजाती है, वो श्रृंगार कर देती है जीव का, अनेक अनेक सद्गुणों से वो सुसज्जित अलंकृत कर देती है जीव को, प्रभु के मिलन के योग्य बना देती है। पर मैं फिर कहूंगा भाई, सही निर्णय तभी वस्तुतः सही है जब वो सही समय पर लिया जाए। भजन तो करना है पर देर से नहीं करना है, देर ही अंधेर है, भजन के मार्ग पर देर ही अंधेर है। भजन करना है, आज करना है, अभी करना है, मन लगे तो भी करना है और मन लगे ना लगे तो भी करना है, भजन करना है, केवल भजन के लिए भजन करना है। ये भूला बिसरा जीव प्रभु के सन्मुख हो जाए, प्रभु से संबंध जुड़ जाए, प्रभु के चरणों से तन मन की गति रति लग जाए, इसलिए भजन करना है। प्रभु अपने लगने लगे इसलिए भजन करना है, प्रभु मीठे लगने लगे इसलिए भजन करना है। टूटी खाट न छाड़ी भावे, सुत के सुत

और बहुत लोगों से मैंने सुना है भाई, वो कहते हैं महाराज मरने से डर लगता है, हमको मरने से बड़ा डर लगता है। टूटी खाट न छाणी भावे और सुत के सुत नातीन खिलावे, लेकिन ये सब करने के बाद भी तृष्णा को नहीं, अंत संसार का विषय ऐसा है वो स्पर्श करते ही बढ़ने लगता है और फिर बढ़ता ही चला जाता है। विषय के सेवन से कभी विषय से अरुचि नहीं होगी भाई। ये सब बात में समेट कर एक पंक्ति में कह दूं, विषय का सेवन करने से विषय से अरुचि नहीं होगी, विषय के त्याग से ही विषय से अरुचि होगी। ये आप आज समझ लें या कभी समझिएगा। आप सोचें कि आज सेवन कर ले कल दूर हो जाएंगे, कल कभी नहीं आएगा। विषय के सेवन से विषय में रुचि बढ़ती है। अग्नि में घी डालो तो अग्नि प्रज्वलित ही तो होती है। विषय का त्याग ही विषय से दूर लेकर जाता है। और मैं तो कभी कभी एकांत में बैठता हूं तो विचार करता हूं, दो स्थितियां आती हैं, मन जानता है कि यह अनुचित है, इसे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी बार बार उस ओर जाता है, बलात् कोई उस ओर ले जाता है मन को। ना करो तो भी मन दुख पाता है, करो तो भी मन दुख पाता है, पर विचार करना चाहिए अगर ना करके भी दुख है और करके भी दुख है तो फिर ना करके ही दुख पा लेना चाहिए। कम से कम उस ना करने की अवस्था में आप तो अपने साथ होंगे, आपका आत्म बल तो उस समय बना रहेगा। दुख तो है और संसार में सुख की आशा लगाना ही बड़ी मूर्खता है, तो दुख ही दुख है भाई। मैं तो इसलिए आपको बीच बीच में कह देता हूँ, स्मरण करा देता हूँ कि साधन का पथ है भाई बड़ा कठिन है, खरोई कठिन है भजन डिंग डरिबो। संसार सरल है, विषय का सेवन बड़ा सरल है, खूब आनंद आता है थोड़ी देर के लिए तो, लेकिन संसार का विषय का सेवन करते करते कब जरा जीर्ण हो जाती है ये देह, कब चेहरे पर झुर्रिया आ गई, कब बाल सफेद हो गए, रोज देखते थे आप दर्पण में, देखते ही देखते ये झांकी हो गई और अभी आगे जाने और क्या दिखाई पड़ेगा, नैन गए और श्रवण हूं और गए मुख दंत। हमारे वृंदावन में एक संत थे, भजन करते थे, बड़े विनोदी स्वभाव के थे, युवावस्था में ही आ गए थे, बड़ा सुंदर उनका दर्शन था, वृंदावन में रहकर भजन किया। वृद्धावस्था आई तो आते जाते कोई भी बाबा बाबा कहकर चले जाता था, हंसते हुए कहते थे, बाल सफेद देखकर कहते थे, बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहु न कराही, बोले इन श्वेत केशों ने तो हमारे साथ में वो किया है जो शत्रु भी नहीं करता। बोले केशव केसन अस्करी जो अरिहू न कराही, किसी ने कहा बाबा ऐसा क्या कर दिया इन केशों ने, बोले अरे चंद्रमुखी मृगलोचनी और बाबा कह कह जाए। तो भाई देखते ही देखते ये स्थिति आ जाएगी। मैंने तो कहा ना कि जैसा जल वो कूप में वैसा बाहर आए, महात्मा खींचे तो भी उसमें से वही आएगा, दुरात्मा खींचे तो भी वही आएगा, तन की गति तो भाई वही होनी है, वही होगी, इसलिए काल चुरैया चुग रही। और स्वामी श्री हरिदास जी महाराज तो कहते हैं अरे भूले भूले कोई भूले, तुम जिन भूलो मालाधारी। व्यास जी ने कहा मूंड मुंडाए की लाज नहीं भइए, आपको तो वैष्णव वेश मिला है, हरि का नाम मिला है, माथे पर ये हरि मंदिर है, गले में तुलसी की कंठी है, हाथ में जप की माला है, तुम जिन भूलो मालाधारी, बस के वृंदा विपिन में इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान।

यह रुचै मुख नाम ना आवे, जैवो जम के घर ही भावे। और उसमें दुर्दशा में दुर्दशा क्या है कि पीड़ा पा रहा है मन, पर फिर भी रुचता संसारी है, फिर भी इच्छा संसार की है। अभी मैं आपसे कह रहा था ना, छोड़िए एक बार मन को, छोड़ दीजिए, देखिए मन कहाँ जाता है, सहज में मन किस ओर जाता है, सहज में मन संसार का स्पर्श करता है कि नहीं, ये देखिए और देखते रहिए। रोगी यही देख रहा है कि मैं इतना दुख पा रहा हूं, देख लिया संसार का हर रंग कच्चा है, झूठा है, पर इतना होने पर भी कैसी माया ने मेरी मति फेरी है, कैसी मेरी मति भ्रमित हुई है कि यह रुचै मुख नाम ना आवे, तो भी संसार रुचता है पर मुख में हरि का नाम नहीं आता, मुख में हरि का नाम नहीं आता। और जैवो जम के ही घर भावे, सुनता हूं शास्त्रों पुराणों की कथाएं सुनता हूं कि अंत में जम के घर जाना पड़ेगा, पर जम के घर जाना तो ठीक है लेकिन संसार नहीं छोड़ना है, ऐसी मन की दुर्दशा हो गई है। और ये आपकी मेरी भाई हम सबकी कहानी है, ये आपकी मेरी हम सबकी कहानी है। एक बात गांठ बांध लीजिए, आज भजन नहीं किया कल कभी आएगा नहीं, कल कभी नहीं आएगा। भजन आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और मैं तो आपको एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि अरे कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, कभी बैठकर प्रभु के स्वभाव का विचार करिए, देखिए उनका स्वभाव कैसा है। रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किसो, श्री ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है, राई के दाने जितना कोई उनका भजन कर ले उसे अपना बना लेते हैं, राई के सम भजन को मानत मेरु समान। और सही कहते हैं संत भाई, अस प्रभु छाण भजहिं जे आना, ऐसे प्रभु को छोड़कर कोई संसार का भजन करे तो ते नर पशु बिन पूंछ समाना। और कल एक और बात मैंने आपसे कही थी, विवेकहीन पशुवत है पर एक प्रकार से पशु से भी गया बीता है। मनुष्य अगर विचार नहीं करता तो वो पशु नहीं है, पशु से गया बीता है, क्योंकि पशु में तो विवेक की संभावना नहीं है, आप में तो संभावना है, आप में तो संभावना है। तो मनुष्य यदि भजन नहीं करता है, मनुष्य यदि आत्म कल्याण का प्रयास नहीं करता है, मनुष्य यदि विवेक युक्त होकर विचार नहीं करता है तो वो पशुवत नहीं है, वो पशु से भी गया बीता है। पशु पंछी ताको समय मानत अपनो राई, मन लाग्यो अति झूठ सो तज सांच ही सुख मूल, मन लग गया इस झूठ में अब क्या करें, अब हटाए हटता नहीं। और ये सरल नहीं होगा भाई, आज तो आप में बल है, शक्ति है, सत्संग में जा सकते हो, दो घड़ी बैठकर भजन कर सकते हो, ग्रंथ का पाठ कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, चिंतन कर सकते हो, आने जाने में स्वतंत्र हो। कल जब निर्भर हो जाओगे, कल जब आश्रित हो जाओगे और कुछ जीवन में नहीं रहेगा, तब आपको लगता है भजन हो पाएगा? कितना क्षण भंगुर ये देह है,

झिली ना झिली, इसीलिए कहा है हरि का नाम रट ले री रसना, फिर अंत समय ये हिली ना हिली। अरे नेक सी पीड़ा कहीं तन में हो जाए, सब भजन साधन छूट जाता है, सब भजन साधन छूट जाता है। नेक सत्तन में कष्ट हो, मन में कष्ट हो, इसलिए आज ये सुख का जो समय है इसका लाभ लीजिए। ये सुख सदा के लिए आपके पास रह जाए, आपके निकट रह जाए, इसका सदुपयोग करिए। भजन करिए, और कब करिए? आज करिए, अभी करिए, यहीं से आरंभ करिए। और छाण सुधा के सुख फल ही जाए गही विष शूल, ये विष के फल मैंने खाए हैं, और

और जैसे जैसे तन जीर्ण हुआ वैसे वैसे लोभ का रोग और बढ़ता चला गया। युवावस्था में तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, लड़ लेता है शरीर रोग से, वृद्धावस्था में तो वो भी नहीं रहता। ये पूरी चर्चा का तात्पर्य ये है कि जैसे जैसे तन जीर्ण होता है, संसार तो यही सिखाता है ना भाई, ये कोई अवस्था है भजन करने की, जब समय आएगा तब भजन करेंगे। संसार तो यही शिक्षा देता है, संसार तो यही सिखाता है, संसार तो कहता है मन लगाकर काम करो, संसार की शिक्षा तो यही है भाई, मन लगाकर काम करो। हमारा काम मन लगाकर करो, हमारे काम में कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए, हमारा काम करो, समय पर करो, मन लगाकर करो, यही संसार की सीख है। पर भाई संत सिखाते हैं मन लगा के हरि का नाम लो, संसार का काम बुद्धि लगाकर करो, माने जितनी आवश्यकता है उतना कर दो, उसके साथ बहुत लिपटने चिपटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बुद्धि का प्रयोग करिए, इन संतों की बात को सुनिए, फिर मनन करिए, चिंतन करिए, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या तात्पर्य है इनका, बुद्धि का प्रयोग संसार में करिए, निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना करिए, पर मन लगाकर हरि का नाम लीजिए। यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहू कौन है सचु पाए। राज महाराज जी ने आज के प्रसंग के बिल्कुल अनुकूल ये पंक्तियां मुझे लाकर दी हैं, और मैं चाहूंगा ये बड़ा सुंदर श्री चाचा वृंदावन दास जी का पद है, आप सब साथ साथ गाना।

और आपके हाथ में जो वाणी है उसके बिल्कुल अंतिम पृष्ठ पर चार पंक्तियां लिखी है श्री ध्रुवदास जी की हैं, प्रार्थना की है युगल चरणों में। सत्र का विश्राम इन्हीं पंक्तियों से किया करेंगे।

महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। भगवद गीता में सनातन धर्म की नीतियों का स्पष्ट वर्णन है। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसी ज्ञान रूपी महासागर की कुछ बूंदें सार के रूप में प्रस्तुत की गई हैं। इन बूंदों को ग्रहण करके आप अपने जीवन को आशाओं से भरें और सुख एवं संपन्नता से परिपूर्ण जीवन जिएं। महाभारत के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है उन्हीं

0: शंभु शंभु शंभु शंभु शिव महादेव
1: शिव महादेव।
0: और रेडियो महारानी भी सुनते रहिए क्योंकि उसमें काफी हटके चीजें आती है, इसीलिए उनका टैगलाइन भी कुछ हटके है।

0: The most powerful leadership tool you have is your own personal example. You are listening to the thoughts of Mr. Sonu Sharma, who is a life coach and motivational speaker. Keep listening, Radio Maharani, Kurt Hatke.
1: हमने कुछ किया पूरी दुनिया के अगेंस्ट जा करके, या अपना कोई डिसीजन लिया कि मुझे ये सही लग रहा है, लोगों ने मना भी किया, फिर भी हमने किया और उसमें हम फेल हो गए. अब वो बार बार हमको अपना वो फेलियर याद आ रहा है, नहीं भी आ रहा तो दुनिया हमको याद दिला रही है आ करके, है ना. जैसे हम कुछ और करने के बारे में सोचते हैं तो लोग हमको वाला फेलियर याद दिला देते हैं कि तेरे बस का कुछ नहीं है, वो देख पहले भी तूने किया था, क्या हुआ. तो बाहर से भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है और अंदर भी हमारे ऊपर अटैक हो रहा है. चलो बाहर से जो अटैक हो रहा है उसको तो फिर भी हैंडल कर सकते हो, उनसे लड़ लो झगड़ लो तो वो भी कहेंगे यार क्या लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, छोड़ो बात मत करो इनसे इसके बारे में. बट अंदर जो अटैक हो रहा है उसको कैसे हैंडल करें, राइट. सारा खेल यही है कि हमारे अंदर हर वक्त कई तरह के अटैक्स चलते रहते हैं, उससे कैसे बचो. आप चाहे पहाड़ पे चले जाओ, चाहे मूवी देख लो, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ देर के लिए आप उसको भूल सकते हो, ठीक है ना. दारू पी ली कुछ देर के लिए, भूल गए, फिर याद आ जाएगा. जैसे होश में आओगे फिर से याद आ जाएगा, सारी बातें दिमाग में घूमने लग जाएंगी. तो खुद से कैसे बचे, समझ रहे. यहां पे जो लिखा हुआ है ना सेल्फ रिफ्लेक्शन, इसका मोटिव यही है कि मेरे सारे सेशंस का एसेंस क्या है. ये नहीं है कि बाहर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर की दुनिया से कैसे लड़ना है, अंदर जो हमारे गड़बड़ हो रही है उसको कैसे हैंडल करना है, अंदर जो अटैक्स होते रहते हैं थॉट के लेवल पे हमारे ऊपर उसको कैसे फेस करें. क्योंकि अगर आप उसको फेस कर गए तो बाहर आपके लिए फेस करना क्या बड़ी बात है, समझ गए ना. और एक्चुअल में बाहर कोई अटैक होता नहीं है, होता अंदर ही है. बाहर अगर कोई आपको कुछ बोल भी रहा है तो अल्टीमेटली चॉइस आपके हाथ में है कि उसका असर आपके ऊपर हो या ना हो, अगर इस बात को हम समझ पाए तो. आप चाहो तो अपने मन में बोल दो अरे ये तो है ही ऐसा, समझ गए, असर होना बंद. आपको नहीं इसने ऐसा क्यों बोला तो असर ज्यादा होगा. जैसे कोई अगर कोई आपको पता है कि कोई पागल है, वो आकर के आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा तो क्या उसके उसके बारे में आप बैठ करके सोचोगे 10 दिन तक कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला. तो किसी का बेसिक नेचर है उल्टे सीधे काम करना या उल्टा सीधा आपको बोलना या आपको तंग करना. तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है उसका बेसिक नेचर है, कोई बात नहीं, तो जैसे आप अंदर से बोल देते हो ना कोई बात नहीं, ये क्या फर्क पड़ता है, उसका जो नेचर है उसका है, मेरा जो नेचर है मेरा है, तो उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाता है. ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है बट ये एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है. जो आंसर है वो ये, डू यू पीपल वॉन्ट कि इस क्वेश्चन को मैं टच करूँ डीपली, कि हमसे कोई गलती हो गई, अब वो गलतियां क्या हो सकती है. गलतियां हो सकती है रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये तो बहुत ज्यादा हो रही है आजकल गलतियां. फेसबुक से गलतियों की शुरुआत होती है, फिर पता नहीं गलतियां कहां की कहां पहुंच जाती है, है ना. अब वो रिलेशनशिप खत्म हो गई, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो तो आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है. ऐसे ही होता है ना कि मैंने ये कैसे कर दिया, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूं, मैं कितनी बेवकूफ हूं, ऐसी ऐसी चीजें आती है माइंड में. हाँ, कि मैं तो समझ नहीं पाती हूँ चीजों को. नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि समझ एक दिन में डेवलप नहीं होती है, धीरे धीरे होती है. कोई माँ के पेट से समझदार नहीं निकलता है, राइट. जब ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे और उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखोगे तभी तो आपको समझदार कहेंगे. जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा गड़बड़ हुई होगी और अगर उसने उससे सीख लिया है तो वो उतना ही समझदार है. विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू

0: your failures and setbacks and your power of overcoming it. इसको ध्यान से समझिए. तो जो भी गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, उसको पहले तो, सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है गड़बड़ हुई है, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट. तो हो सकता है आपको जवाब मिले कि कहीं मैंने कमिट करने में जल्दीबाजी तो नहीं करती थी इस रिलेशनशिप में, मे बी कि 4 दिन की रिलेशनशिप थी और मैंने फटाफट से डिसीजन ले लिया. तो इससे आपने क्या सीखा कि आप जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, स्पेशली बड़े डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं लेने. कौन सा कपड़ा खरीदना है, कौन सा नहीं खरीदना है, तो आप जल्दी में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. 10-20 रुपए महंगा भी खरीद लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन हम क्या है, वहां पर पूरा टाइम लगाते हैं. 10 दुकानों में जाएंगे, ट्राई करेंगे, 100 रुपए के पीछे पता नहीं कितनी किचकिच करेंगे. 100 रुपए में ज्यादा बोल रहा हूँ, 20-20 रुपए के पीछे कितनी किचकिच करेंगे. और लाइफ के जो बड़े डिसीजन है वो कैसे लेते हैं हम? बहुत सारे लोग तो लेते ही नहीं है, उनके लिए वो डिसीजन कोई और ले लेते हैं. करियर का डिसीजन, रिलेशनशिप का डिसीजन, ये वो लेते हैं तो जल्दी में ले लेते हैं, होता है ना. स्पेशली हमारे इंडिया में बड़ा चलता है इसको, अरेंज मैरिज बोलते हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिज, इट इज अ वेरी वेरी वेरी क्या कहूँ, वेरी नो कमेंट्स. तो जो भी है, अरेंज मैरिज में क्या गड़बड़ मुझे लगती है, मुझे जो जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो मुझे गड़बड़ लगती है वो क्या है कि लड़का लड़की मिले और दोनों तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया. अरे बहुत बढ़िया है, अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तू हाँ कर दे. और उसने हाँ कर दी, ठीक है बढ़िया है, मतलब कि घर वाले जो है उनको बढ़िया लग रहा है या लग रही है. आप तो थोड़ा तो टाइम लगाओ. एक घर खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं. यहाँ कुछ खरीद नहीं रहे हो माना, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसीजन है अपनी लाइफ का, इनफैक्ट सबसे बड़ा डिसीजन है. गाड़ी गलत ले ली तो उसका सोल्यूशन है, कबाड़ी को दे सकते हो. ये पति को किसको कबाड़ी में दोगे? जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, इसको पकड़ के रखो. दिस इज कॉल्ड विजडम. ये मैं कहां से बोल रहा हूँ, शायद अगर आज से आप 20 साल पहले मेरे से ये सब बातें करते तो मैं नहीं बोल सकता था ऐसा. मैं क्या कहता, अरे करो करो करो, और पीने वान करा, लगा दो बियर, लगा ये करो, बाइक ना लटा के मोड़ेंगे. मैंने सारे काम करे, ऐसा नहीं करे, लटाए भी और कई बार खुद भी लेट गया. और पीछे वाला कहता है, कहता यार मैंने क्या गलती करी, तो मुझे ऐसे ही ठोकता रहता है. आप समझ रहे हो, तो ये सब काम मैंने करे हैं. तो वो करके मैं अब आपको बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत करो, मैं कह रहा हूँ समझ लो कि ये करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा. कर भी दिया तो उसे सीख लो, ग्रो आउट ऑफ इट. मैं ये नहीं कह रहा गलतियां मत करो. अरे मैंने खुद बहुत गलतियां करी है, तो मैं आपको कैसे बोलूंगी गलतियां मत करो. गलतियां करो बट लर्न फ्रॉम इट. सही काम करो लेकिन उसमें चिपके मत रहो कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ लिया. समझ गए, मैंने ये सही काम कर लिया, मेरी फैमिली में और जो लोग हैं वो नहीं कर पाए, व्हाटएवर, आपने टॉप कर दिया कहीं पर. तो अपनी ईगो को मत बढ़ाओ, ग्रो आउट ऑफ इट. ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? मिल रहा है आपको जवाब? मिल रहा है? एक बार मैं इसको थोड़ा और डीपली टच करता हूं. तो जब भी हमारे अंदर से ये आता है कि हम पुरानी सिचुएशंस के बारे में सोच सोच करके दुखी हो रहे हैं, तो उससे सीखो, गो इन टू द रूट कॉज ऑफ इट, ताकि वो जो गलती आपने करी वो दोबारा मत करो. दैट इज इंपॉर्टेंट. पहली बार, अब देखो कितनी मजेदार चीज निकल के आ रही है बात करते करते. पहली बार अगर आपने लाइफ में कोई भी गलती करी है तो वो गलती नहीं है, समझ गए, अनजाने में करी है तो गलती नहीं है. लेकिन उसी गलती को आप बार बार कर रहे हो, ये गलती है. मुझे एक चीज की नॉलेज ही नहीं है और मैंने सही सोच करके किया लेकिन मेरे साथ में गलत हो गया, ये गलती नहीं है. कुछ भी नया करेंगे तो उसमें सही और गलत होने की तो पॉसिबिलिटी रहेगी ना, सक्सेस फेलियर की तो रहेगी ना. तो आप फेल हो गए, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उस फेलियर से कुछ सीख नहीं रहे हो और दुखी हो रहे हो, ये गलती है, ये ब्लंडर है. अपनी गलतियों के बारे में सोच सोच करके आप दुखी हो रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये गलती है. कोई भी गलती आपकी लाइफ की इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपके ऊपर हावी हो सके. हमेशा अपने अंदर इस बात को याद रखना, मेरी लाइफ की जितनी भी बड़ी से बड़ी गलतियां हैं मैं उससे बड़ा हूं. अपने आप को ये बोलो, आप कितनी भी बड़ी गलती कर लो, ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि आपकी गलती को एब्जॉर्ब कर जाए. अगर आप यूनिवर्स के एंगल से देखोगे तो आपकी गलती बहुत छोटी लगेगी, जिसको आप बड़ी समझ रहे हो. कोई भी गलती बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं है जिसको माफ ना किया जा सके, चाहे फिर वो आपने करी चाहे किसी और ने करी. तो गलतियों से सीखो। सीख करके क्या होगा, आप धीरे धीरे मैच्योर होते चले जाओगे, अंदर से स्ट्रांग होते चले जाओगे। ये दोनों चीजें तभी होंगी जब आप सीखोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक गलत रिलेशनशिप में एंटर करके ये सीखा कि मुझे पेशेंस रखना है लाइफ में, तो क्या ये छोटी क्वालिटी है? Do you think patience is small? मतलब patience is so big यार। Patience से आप कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, सही decisions ले सकते हो, सही choices ले सकते हो, अगर आप में patience है तो। आराम से सोच समझ करके decision लेना है।
1: My question is that how should one maintain mental stability and balance of mind in situations of life and death?
0: बहुत भारी सवाल है वैसे तो, बट ये सवाल क्योंकि हर एक को फेस तो कभी ना कभी करना ही है। जो लोग आपके आसपास में जिनको बहुत प्यार करते हो उन्होंने मरना ही। अब मैं देखो कितने आराम से बोल जाता हूँ, बिकॉज मेरे लिए मैटर नहीं करती। अब ऐसा क्या हो कि आपके लिए भी मैटर ना करे? समझ गए ना, वो इंसान जिससे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, कोई भी हो सकता है, वो मर सकता है ना। आज हम खुद भी मर सकते हैं, तो कैसे अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि इन सब चीजों का भी हमारे ऊपर असर ना हो। ऊपर ऊपर से तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता ऊपर से नहीं होगा, अंदर से नहीं। ऊपर और अंदर का मतलब हमको समझ आ रहा है? देखो इसको भी ध्यान से समझना पड़ेगा, व्हाट इज आउटर व्हाट इज इनर। आप एक मूवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, रो रहे हो, तो ऐसा लग रहा है आपके ऊपर भी असर हो रहा है और अंदर भी हो रहा है, लेकिन क्या एक्चुअल में हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो मूवी। तो आपकी अचीवमेंट्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, आपके फेलियर्स का भी आपके ऊपर असर ना हो, दुनिया जो आपके बारे में कहती है उसका भी आपके ऊपर असर ना हो, हेल्थ से रिलेटेड आपके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए बॉडी में उसका भी आपके ऊपर असर ना हो। ये सब चीजें ऐसी हैं जो होनी होनी है आप लोगों के साथ। अभी हो सकता है समझ नहीं आ रही होंगी, पर जैसे जैसे एज बढ़ेगी धीरे धीरे समझ आएगी ये सारी बातें। उसके अलावा आपके आस पास में अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार हो गया जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तब भी आपके ऊपर असर ना हो। और भगवान ना करे अगर वो इस दुनिया से चले गए, उसका भी आपके ऊपर असर ना हो। क्या ये हो सकता है? पहले तो सवाल ये है, क्या लगता है आपको, हो सकता है नहीं हो सकता है? सच बोलो, ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ बोलने के लिए बोलना है। नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है। क्यों कह रहे हो कि नहीं हो सकता है? धीरे धीरे अगर आपको ये समझ आ जाए, अगर ये नहीं समझ आया तो नहीं हो सकता। मान लो कि जो मैं आपको बात बोलने वाला हूं, एक बार को मान लो कि क्या पता वो सच हो, मैं सच बोल रहा हूं अपनी तरफ से, लेकिन आपको हो सकता है समझ ना आए। मुझे समझ आ गई है इसलिए मेरे लिए वो सच है। वो क्या है? अब इससे आपको जवाब मिल जाएगा कि लाइफ में बैलेंस कैसे बनाते हैं। बैलेंस का मतलब लोग ये समझते हैं कि हमेशा हम खुश रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। नहीं जी, रो रहे हो तो खुल के रोना है, ठीक है? दुखी हो रहे हो तो पूरी तरह से होना है, हंस रहे हो तो खुल के हंसना है, जी रहे हो तो खुल के जीना है। गेम है जिसमें मैं एक प्लेयर हूं, मैं गेम खेल रहा हूं, लेकिन जो मैं गेम खेल रहा हूं उसमें जो भी कुछ हो रहा है उसका एक्चुअल में मेरे ऊपर असर नहीं हो रहा है। ये बात अभी हमको समझ नहीं आती है। अगर ये बात हमको समझ आ जाए, जो मैं रोल की बात करता हूं, मैंने अपने हाउ टू कंट्रोल योर माइंड वाले में भी एग्जांपल दिया था, एक रोल का एग्जांपल दिया था कि आप एक रोल प्ले कर रहे हो और आप एक्चुअल में कुछ और हो, तो आपको समझ आए कि मैं हूं कौन और जो मैं एक्चुअल में हूं उसके ऊपर कुछ भी हो रहा है इस खेल में उसका कोई असर नहीं होता है। तो बाहर से देखने में लग रहा होगा कि आपके ऊपर असर हो रहा है, शायद आंसू भी आ रहे होंगे, शायद आप हंस भी रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, फेल हो रहे होंगे, सक्सेसफुल हो रहे होंगे, लेकिन अंदर से यू ऑलवेज बी अनटच्ड। अगर ये नहीं पकड़ में आया तो कोई सोल्यूशन नहीं है ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछोगे तो। क्योंकि क्या होगा, आप एक वीडियो गेम खेल रहे हो लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये गेम है, लाइफ एक गेम के जैसी है, लेकिन आप इस गेम में सीरियस हुए पड़े हो, तो क्या होगा, आप सही डिसीजंस ले ही नहीं सकते। आपके जो भी डिसीजंस होंगे वो ज्यादातर गलत ही होंगे। क्यों गलत होंगे? जबकि आपकी सलाह सही होगी, आप अपने दोस्तों को सलाह दोगे वो सलाह सही होगी, लेकिन खुद को सलाह दोगे वो गलत होगी। क्यों? मैं बीच में आ गया ना। बस इसको ध्यान से समझ लो, ये बात पकड़ में आ रही है ना कि जब हम सलाह देते हैं किसी और को तो बड़ी सही सलाह देते हैं, जब हम खुद उस सिचुएशन में होते हैं तो हम बेवकूफों की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने आप को उस सिचुएशन से आइडेंटिफाई कर लिया। जैसे गेम खेलते खेलते सपोज आप भूल ही गए तो क्या होगा, एकदम से वो बंदा मरा या उसको चोट लगी या उसका पैर टूटा, हड्डी टूटी, तो आप रोने लग जाओगे, चीखने चिल्लाने लग जाओगे। मतलब हो क्या रहा है, हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए उस गेम में, डिटैच होकर के उस गेम को नहीं देख पा रहे हैं। इसको ये कहना भी गलत नहीं होगा, हम भूल ही गए हैं कि ये खेल है, ठीक है ना। खेल में हम बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, लाइफ को एक खेल की तरह देखो। मेरे लिए लाइफ कैसी है, मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे व्हाट डज लाइफ मीन टू मी, मेरे लिए जो बॉडी है ना और जो माइंड है, माइंड मतलब समझते हो कि जो प्रोग्रामिंग है जिसके थ्रू ये बॉडी काम कर रही है, एक सॉफ्टवेयर है एक हार्डवेयर है, क्लियर है ना। जो हमारे थॉट्स हैं वो सॉफ्टवेयर के जैसे हैं, बॉडी हार्डवेयर के जैसी है। जैसा सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है वैसी बॉडी एक्ट कर रही होती है। सॉफ्टवेयर निकाल दो बॉडी में से तो बॉडी कैसे एक्ट करेगी, क्लियर हो रहा है ना। तो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है एक हार्डवेयर है। तो मेरे लिए लाइफ क्या है, मैं दोनों से ही अनटच्ड हूं, ना तो मैं हार्डवेयर हूं ना मैं सॉफ्टवेयर हूं, मैं इन दोनों को क्रिएट करने वाला हूं। बन गया ना खेल, पहचानना की जरूरत ही नहीं, आप हो, आप इस बोतल से अलग हो, इसमें पहचानने की क्या जरूरत है। आप बोतल को देख रहे हो, बोतल आपको नहीं देख रही है, क्या ये फैक्ट है या कोई इल्यूजन है? फैक्ट है भाई। आप अपनी इस बॉडी को देख सकते हो लेकिन ये बॉडी आपको नहीं देख सकती, ये फैक्ट है या इल्यूजन है? फैक्ट है। तो फैक्ट के बारे में क्या सोचना है, क्लियर हो गया। तो मैं जानने वाला हूं इस पूरे के पूरे खेल को, अब इससे क्या होगा, देन यू विल बिकम एन आर्टिस्ट, एक कमाल के खिलाड़ी बन जाओगे आप लाइफ के। लाइफ आपके लिए खेल जैसी हो, मतलब एक कमाल का खेल। अब खेल क्या है कि किस तरह से इस हार्डवेयर को, मतलब कि इस बॉडी को, और इस सॉफ्टवेयर को, मतलब कि माइंड को प्रोग्राम किया जाए, इस बॉडी को डिजाइन किया जाए, और इसके आसपास में जो रिलेशनशिप्स है, जो बिजनेस है, जो काम है, जो भी कुछ मैं कर रहा हूं इस सोसाइटी के लिए या अपने लिए या ये वो, सबको कैसे परफेक्टली किया जाए। तो परफेक्ट कभी हो नहीं सकता, लेकिन नहीं भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये खेल है, समझ पा रहे हो। तो धीरे धीरे, अगर और कुछ नहीं तो यार मेरी इतनी सी बात को समझो, ज्यादा डीप में मत जाओ, इतनी सी बात को समझो कि जिंदगी एक खेल है। अगर ऐसा आप मान लेते हो तो आपका गया क्या, ये बताओ मुझे। आपको सब कुछ मिल गया लेकिन आपका गया कुछ भी नहीं, क्योंकि अब इस खेल को आप अच्छे से खेल सकते हो। फिर 24 घंटे आप यही दिमाग लगाओगे कि अब कहां पर इस खेल में ना क्या कमी रह गई है। जैसे वीडियो गेम खेलते हैं, हम सब खेलते हैं, उसमें क्या पहले दिन में जब आप खेल रहे होते हो आप एक्सपर्ट हो जाते हो? पहले दिन में क्या 10वें लेवल पे पहुंच जाते हो? ऐसा नो, नहीं पहुंचते हो, टाइम लगता है ना। लेकिन क्या आप पहले दिन में 10वें लेवल पे नहीं पहुंचे तो क्या खेल खेलना बंद कर देते हो? आप उसको परफेक्ट करते रहते हो, बार बार गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर गिरते हो, फिर जीरो से शुरू करते हो, फिर उसको बेटर करते हो, बेटर करते हो, बेटर करते हो। धीरे धीरे आप क्या होता है, आपका लेवल बेटर होने लग जाता है। आप 5वें पे जाते हो, 10वें पे जाते हो, 20वें पे। अब जिंदगी के खेल पे वीडियो गेम में क्या फर्क है, वीडियो गेम में एक एंड आ जाता है, एक एंड आ जाता है कि ये 50वां लेवल है, इसके आगे और कुछ नहीं है। जिंदगी के खेल में कोई एंड ही नहीं है, देयर इज नो एंड, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दैट परफेक्शन इज जस्ट अ वर्ड व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, दैट इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ। नहीं तो मैं करता क्या, समझ रहे हो, नहीं तो आप करोगे क्या? अगर परफेक्ट हो गए तो अब खेल में मजा ही नहीं रह गया। जब तक जिंदा हो, जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक हम हैं इस दुनिया में, तो उस खेल को हम बेटर करते चले जा रहे हैं, और बेटर, बाहर नहीं अपने अंदर। और अगर अंदर के खेल को आपने परफेक्ट कर लिया तो आपको यह भी पता होगा मेरे को किस आदमी से कैसे बात करनी है, कैसे नहीं करनी है। मतलब अब आप अवेयर हो गए उस खेल में, अभी आप अवेयर नहीं हो, अभी आप बस अपने बारे में सोच रहे हो, आप सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहे हो। आपको यह तक पता होगा कि इस खेल में अगर मैंने ये उल्टा बोला अपनी वाइफ को तो वहां से एक रिएक्शन आएगा जिसकी वजह से हमारी 4 दिन तक लड़ाई चलेगी। क्यों बोलना है, मत बोलो। क्यों ऐसी बातें बोलनी है जिसकी वजह से कलेश होने वाला है, या उन्होंने कुछ बोल दिया तो चुपचाप मुंह नीचे करके वहां से निकल जाओ, कितना मजा आएगा खेलने में। मतलब जब तक आपकी सांसें चल रही होंगी, बीमार हो गए, अभी क्या होगा, बीमार हो गए तो रोने लगे होंगे, या थोड़ी सी नेगेटिविटी आ गई, थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया, तो क्या होगा? दुखी हो जाओगे। दुखी क्या होना है? खेल है, खेल का पार्ट है। बीमार होगा, उस बीमारी को देखो। समझ पा रहे हो क्या मुश्किल है करना? बहुत आसान है, अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो। अपनी उस बीमारी को डिटैच होकर के देखो कि मेरे हाथ में एक रिमोट है, यानी कि माइंड, और ये बॉडी है जो स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, और ये बॉडी बीमार हो गई। अब मैं क्या करूं? अब उस रिमोट में क्या ऐसा कोई बटन है जिससे या तो बीमारी ठीक हो, या वो बीमारी दोबारा ना हो, या अगर बीमारी पता है कि हो गई है और इतने दिन लेगी ये ठीक होने में, और उसका उसकी कोई दवाई अभी बनी नहीं है इस पर्टिकुलर गेम के अंदर जिसको वर्ल्ड बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, तो मैं क्या करूं? चलो एक्सेप्ट कर लेता हूं, खेल है, लेट इट बी, हमेशा के लिए नहीं रहने वाली, 10 दिन में गायब, समझ गए? तो देन यू विल हैव पेशेंस आल्सो। ठीक है, खेल चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है? खेल में किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, क्या फर्क पड़ता है? रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी हो गई, क्या फर्क पड़ता है? जो अच्छी है आज कल बुरी भी हो सकती है, जो आज बुरी है कल अच्छी हो सकती है। खेल की तरह देखो, बिजनेस को खेल की तरह देखो, लाइफ को खेल की तरह देखो, अपने आप को बेटर बनाने के बारे में सोचो। ये हम नहीं सोचते हैं, बस हम ये सोचते हैं कि जो हमको चाहिए ना वो फटाफट से हमको मिल जाए। तो उस चक्कर में आप चिंदी बन जाते हो, बुरा लगेगा सुनने में, पर चिंदी बन जाते हो। समझ ही 5-10 हज़ार रुपए वाली बन जाती है। उस वजह से हम ग्रो नहीं कर पाते, उस वजह से हम लाइफ में दुखी रहते हैं, हम नीचे धंसते चले जाते हैं, क्योंकि फिर हमारी सारा जो सुख दुख है वो चीजों से रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है, बाहर जो चीजें उससे रिलेटेड है। सारा कंट्रोल दुनिया के हाथ में है, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल ही नहीं। आ रहा है ना पकड़ में? चीजें आ गई चली गई, क्या फर्क पड़ता है? खेल है, समझ गए? आज ये बॉडी है, इस बॉडी के आसपास में और बॉडीज है, कल एक बॉडी उसमें से कम हो गई, क्या फर्क पड़ता है? खेल है। ये धीरे धीरे समझना है आपको इसको, ये बॉडी कम हो गई चाहे दूसरी बॉडी में, क्या फर्क पड़ता है? खेल है। एक बीमार हो गई फिर ठीक हो गई, समझ रहे कितना मतलब मजेदार है, इट्स फनी एक्चुअली। अगर आप इसको लाइट हार्टेड होकर के देख पाओ तो आपके लिए एक्चुअल में दूसरों की लाइफ तो फनी ही है, बस अपनी लाइफ ही सीरियस है। हेलो, पड़ोसी के साथ कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब आपके लिए फन है। अपनी लाइफ में जरा से भी कुछ हो जाए तो ये क्या हो गया मेरे साथ में, क्या मूर्ख वाली हरकत है। बी मैच्योर, बी वाइज, समझो कि किसमें आपकी पावर्स बढ़ेंगी और किसमें घटेंगी। बिजनेस में लॉस लग गया, मान लो बहुत बड़ा लॉस लग गया, अब लग रहा है कि बेटा कल सड़क पे आने वाला, क्या हो गया? खेल है। अब देखते हैं अगली चाल क्या होगी, मुझे खुद भी नहीं पता कि अगली चाल क्या होने वाली। अरे मजा आ गया, खेल है, समझ रहे हो? यही तो खेल का मजा है, मुझे नहीं पता अगले कदम पे क्या होने वाला, यही तो एडवेंचर है। देखो एक वीडियो गेम है जिसमें जो लेवल्स आप क्रॉस कर चुके हो उसी को बार बार क्रॉस करने में मजा आता है, या अगले लेवल पे जाने में मजा आता है। ये बात लोगों को समझ नहीं आती है रियल लाइफ में। जैसे जिंदगी जी रहे थे आज से 10 साल पहले, आज भी वैसे जी रहे, रिपीट मोड, ईट स्लीप रिपीट, ईट स्लीप रिपीट, रिपीट कर रहे हैं, क्या मजा है, सेम लेवल पे। इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड है सारे के सारे, उनके पास जाकर के बैठोगे खुद थके हुए हैं, आपको भी थका देंगे। लाइफ नहीं नजर आएगी, बॉटल जैसे है, समझ गया ना? बॉटल मुर्दा है ना, मुर्दा है ना, इसके अंदर जान नहीं है ना, लोगों के अंदर जान है क्या? अरे नहीं, बहुत कम लोग मिलेंगे जिनके अंदर जान होगी, मतलब वो जिंदगी के हर पल में आपको एक्टिव मिलेंगे। बच्चों के साथ खेलेंगे तो खुल के खेलेंगे, काम करेंगे तो खुल के करेंगे, जो करना है वो खुल के करेंगे, इश्क करेंगे तो खुल के करेंगे, कमाल के आशिक होंगे वो, समझ गए? इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी चीजें जो आदमी सोच भी नहीं सकता वो सोच सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके लिए ये खेल है। लोग सोच भी नहीं सकते कि क्या एक हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप परफेक्ट हो सकती है, सोच सकते हैं? सोचते ही नहीं, लोगों को सोचने में डर लगता है, हो सकता है, बहुत आसान, देख सकते हैं मेरी आंखों में, झूठ नहीं बोल, बहुत आसान है। अगर खेल समझ जाओ तो, खेल समझ आए तो, समझ गए ना? मेरा पति है, उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, अब मुझे सारा कुछ याद आ रहा है, उसने पहले भी वो किया था, अब जिस बात पे हमारी लड़ाई हो रही है वो तो हम भूल ही गए हैं, हमारी बहस किसी और बात पे हो रही है, अब वो सारा कुछ आ गया, मैं क्या करूं, अब वो भी चीख रहा है, मैं भी चीख रही हूं, समझ रहे हो ये क्या गेम चल रहा है यार, इसको आराम से समझो, इसको खेल की तरह देखो, लग गई तो क्या हो गया, लगी हुई है लाइफ में, सबकी लगी हुई है, क्या हो गया, खेल है, खेल है जी, अभी लगी हुई है, कल बेटर हो जाएगी लाइफ, जरा सा कुछ अच्छा हो जाएगा, आज जो जॉब है वो अच्छी नहीं है तो आज बुरी हालत है, ठीक है, पार्ट ऑफ गेम है जी, पार्ट ऑफ लाइफ है, कल एक अच्छी जॉब लग जाएगी, हम एकदम से खुश होने लग जाएंगे, फिर वहां पे कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ये गेम है, बी एडवेंचरस, बी रेडी टू प्ले दिस गेम ऑफ लाइफ, अगर ऐसे आप बन सको, जो बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कहां है फियर ऑफ डेथ बताओ, इफ यू नो दैट कि बॉडी जिसको हम डेथ बोलते हैं, इस बॉडी को बचाने का कोई तरीका नहीं है, मरनी ही मरनी है, जानी जानी चाहिए, ये बॉडी हो चाहे कोई भी बॉडी हो, जो अंदर का सॉफ्टवेयर है जो इससे कनेक्टेड है, वो जब ये बॉडी नहीं तो वो सॉफ्टवेयर कहां है, समझ गए, तो सॉफ्टवेयर भी गया, हार्डवेयर भी गया, बचा क्या, मैं बचा, ये मैं नहीं पता कि क्या बचता है क्या नहीं बचता है, और मैं हूं कौन ये नहीं पता है, तो फियर ऑफ डेथ निकल जाता है, कोई और भी अगर गया तो क्या गया, बॉडी गई ना, कुछ है जो नहीं मरता है, वो हमको समझ आ जाए कि वो जो कुछ है इस पूरी दुनिया में एक ही चीज है और कुछ नहीं है, बाकी सब मरता है, सब मरता है जी, ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं मरता, कुछ ऐसा है जो पिछले हजारों सालों में, लाखों सालों में, करोड़ों सालों में, जब से दुनिया थी है और जब तक रहेगी, वो नहीं मरा, अगर हमको समझ आ जाए कि मैं वो ही हूं तो तब ये खेल कैसा होगा, समझ पा रहे हो, मतलब इवन इफ आई वॉन्ट टू आई कैन नॉट डाई, एंड इवन इफ आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट दिस बॉडी, दिस कैन नॉट सर्वाइव, दिस हैज टू डाई, इज द पार्ट ऑफ द गेम।

0: आज मैं आपको बताता हूँ हेलमेट ना पहनने के दो फायदे।
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
0: पहला फायदा, आपके ऊपर मूवी बनाई जाएगी क्योंकि सार फूटने से आप गाज नहीं बांध सकते हैं।
2: बहुत तेज हो रहे हो।
0: दूसरा फायदा, आपकी पुलिस वालों से अच्छी जान पहचान हो जाएगी क्योंकि हार सिग्नल पर वो आपको रोक ही लेंगे।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

इस शानदार से ट्रैक के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। भाई 7 बज चुके हैं और सुबह हो गई है प्यारी वाली, यानी कि अब टाइम हो गया है बिस्तर छोड़कर जाने का ऑफिस। तो देखिए, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या फिर अपने घर में ही क्यों नहीं है, आज के दिन को अच्छे से एंजॉय करने का तरीका ये है, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, गर्मा गर्म मसाले वाली चाय की पहली चुस्की लीजिए और एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पे मॉर्निंग एक्सप्रेस शो को, जहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। यानी कि यहाँ आपको मिलने वाला है एंटरटेनमेंट का डबल डोज, साथ ही आपको मिलेगा वेदर अपडेट से लेकर सोशल स्यापा और क्या कुछ हो रहा है आपके आसपास, यानी कि किस तरह का स्कैम आ गया है मार्केट में, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना होगा इंतजार, तो बस फटाफट से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ संदीरा, सिर्फ तुम्हारा।

0: बस जैसा अपना हाल है यारो,
1: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
0: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारो।
1: ये बात तो सही है।
0: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
1: कैसे कैसे?
0: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
1: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
0: सुनो सुनो, हेलो टिकट कटवा लेना।
2: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
3: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
4: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: दुनिया का बॉस।
1: लगता है बॉस हमें टॉस कर।
2: मॉर्निंग एक्सप्रेस लेकर एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं। वेलकम टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजेएनसी ऐप के साथ। और अब टाइम हो गया है वेदर अपडेट का। अगर आज हाईएस्ट टेम्परेचर की बात की जाए 33 डिग्री रहेगा। इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए 27 डिग्री है। विंड स्पीड आपको 19 मिलने वाली है और साथ ही ह्यूमिडिटी मिलने वाली है 72%। और दिन रहने वाला है क्लाउडी, यानी कि मौसम बहुत ही सुहाना है, बहुत ही अच्छा मौसम है। और इस बदलते मौसम में अपना ख्याल जरूर रखेगा, साथ ही अपनों का ख्याल रखेगा। और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: You're different. You know, सबसे अलग. मेरी बात सुनते हो. You really listen. काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता. Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees.

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी। सुबह की लेजीनेस को दूर भगाने के लिए सुनते रहिए मॉर्निंग एक्सप्रेस ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो, टिकट कटवा लेना।
2: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
3: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
4: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा

अगर आज के जनरेशन के मोस्ट लव्ड रोमांटिक वॉइसेस की बात होना तो अरमान मलिक का नाम अपने आप आ ही जाता है। वेलकम बैक टू रेडियो मनानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ हम हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं अरमान मलिक का। और अगर अरमान की बात की जाए ना, तो 4 साल की उम्र से म्यूजिक की दुनिया में इन्होंने कदम रखा और फिर बस अपनी आवाज का जादू अपने फैंस पर इस कदर बिखेरा कि हिंदी के साथ साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली, मराठी, पंजाबी, इवन इंग्लिश में भी गाने गाए हैं। और इतना ही नहीं, अगर इनके सुपर हिट गानों की बात की जाए ना, तो गाने कुछ इस तरह है, मैं हूँ हीरो तेरा, बोल दो ना जरा, सब तेरा, जब तक और साथी कौन तुझे। तो भाई बहुत सारे गाने हैं, ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं बड़ी बेसुरी हूँ तो ये गाने ना बता के सुनाने में मजा नहीं आ रहा। ये गाने जब आप सुनेंगे ना जाकर, तभी इनका असली जो है लुफ्त उठा सकते हैं। और अगर अरमान की बात की जाए तो सिर्फ बॉलीवुड तक खुद को सीमित नहीं रखा है, अरमान ने इंग्लिश पॉप म्यूजिक में भी अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो चलिए फिर विश करते हैं अरमान को, रेडियो महारानी विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे अरमान। आप ऐसे ही अपने फैंस का दिल जीतते रहे और सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: यू आर डिफरेंट, यू नो, सबसे अलग. मेरी बात सुनते हो, यू रियली लिसन. काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता. एम आई मेकिंग सेंस?
1: नॉट एट ऑल. बट दैट विल बी 3,000 रुपीज.

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: टियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

अगर मैं कहूँ कि आपको एक आम चूज करना है तो आपका फेवरेट आम कौन सा होगा? अल्फेंसो, लंगड़ा, दशहरी या फिर सफेद आम? बहुत सारे आम है और हर आम का ना अपना एक अलग स्वाद है। और आज मैं आम की बात करूँ ये भी आपको बताऊंगी। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजेंसी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल मैंगो डे। यानी कि एक ऐसा दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है जहाँ पर वैरायटी ऑफ मैंगोस को हम लोग टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं और बस उसका लुफ्त उठाते हैं। और अगर बात की जाए ना मैंगो की, तो किंग ऑफ फ्रूट्स में इसे कंसीडर किया जाता है। तो चलिए फिर एक छोटी सी कहानी हो ही जाए। एक छोटा सा बच्चा गर्मियों की छुट्टियों का इंतजार सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से करता था, वो थी नानी के घर।

तो अपने लव्ड वंस, अपने फैमिली के साथ जरूर बैठ के एंजॉय कीजिएगा। और भाई तब तक के लिए आप कीजिए अपना मैंगो एंजॉय, और मैं चलती हूँ, मिलती हूँ इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: मोबाइल पर एक क्लिक से आप दुनिया घूम सकते हैं, पर वाहन चलाते समय मोबाइल यूज करने पर आप दुनिया से गुम हो सकते हैं।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आजकल हम लोग अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि अपने पुराने दोस्तों को इवन अपने फैमिली मेंबर को ना टाइम ही नहीं दे पाते हैं। और हम ना इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि हमारे पास वक्त भी नहीं है ये सोचने का कि बहुत टाइम से हमने लोगों के साथ कभी बात भी नहीं की। सो वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं एवरीबॉडी डिजर्व अ मैसेज वीक, यानी कि ये वीक हमें ये बताएगा कि अपनों से कनेक्ट कैसे किया जाता है। तो बस इसी पर्पस के साथ ऑब्जर्व किया जाता है ये वीक। सो ये वीक हमें याद दिलाता है कि एक छोटा सा मैसेज जैसे कि कैसे हो, टेक केयर, आई एम प्राउड ऑफ यू, ये सारे मैसेजेस ना आपके लव्ड वन के चेहरे पर एक बहुत प्यारी स्माइल लेकर आ सकते हैं। और वैसे भी अगर हम इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में 5 मिनट अगर अपनों के लिए निकाल लेते हैं ना, तो वो हमारे लिए भी किसी थेरेपी से कम नहीं है। माय डियर लिसनर्स, आज मैं किसी कहानी के साथ नहीं, आज मैं एक चैलेंज के साथ आई। और तो भाई चैलेंज ये है, फटाफट से अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट खोलिए और किसी भी इंसान को बिना किसी काम के बस एक प्यार भरा मैसेज भेज दीजिए और बस फिर देखिएगा कि आपका एक मैसेज उनका पूरा दिन बना सकता है। और हर मैसेज का रिप्लाई जरूरी नहीं होता, हो सकता है आपको वहां से रिप्लाई ना आए, लेकिन आप अपने एंड से कोशिश जरूर कर सकते हैं। और हर थॉटफुल मैसेज किसी ना किसी का दिन जरूर बनाता है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए आज का दिन, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: अपनी वाइफ को हैकर्स और रोड के माइकल शुमाकर वन्नबी से बचा के रखो। हैकर्स ऐसे फिशिंग करते हैं जैसे हम फ्री समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं। पर तुम शेडर लिंक मत खोलना, वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा रिकैलकुलेटिंग लाइफ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, ऐप्स अपडेटेड रखो, वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: इस शानदार सुरख के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। यहाँ आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा सोशल स्यापा जिसे सुनने के बाद ना दिल एक्चुअल में गार्डन गार्डन हो गया। हम इंसान अक्सर सोचते रहते हैं लेकिन ये जो हमारे फर बेबीज होते हैं ना ये वो काम कर भी जाते। मैं बात कर रही हूँ डॉग्स की। जितने भी डॉग लवर है ना इस चीज से रिलेट जरूर करेंगे। और आज ने इमोशनल स्टोरी मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ जो कि इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और ये स्टोरी है एक डॉग अपने ऑनर के लिए 24 किलोमीटर का सफर तय करके सिर्फ और सिर्फ उनसे मिलने गए। और ये बात किसी को नहीं पता थी घर में। और जब ऑनर अपनी जॉब से वापस आया ना बाहर निकलकर, तब उसने क्या देखा, उसने देखा कि उसका जो डॉग है वो उसकी कार के ऊपर बैठा हुआ था, अपनी पूंछ को हिला रहा था जैसे वो अपने मालिक को ये बताना चाहता हो कि देखा मैं आपसे मिलने आ गया। लेकिन उसके ऑनर के दिमाग में एक बात है कि इतना बिजी रोड होने के बाद, अननोन रास्ते होने के बाद, इतनी थकान होने के बाद भी ये मुझसे मिलने आए हैं और कोई भी उसे रोक नहीं पाया। उसे शायद अपने ऑनर तक मिलना था। शायद इसी को प्यार और लॉयल्टी कहा जाता है। और आज की स्टोरी हमें ये मैसेज देती है, ट्रू लव डायरेक्शन नहीं देखता, लॉयल्टी सिर्फ वर्ड से नहीं एक्शन से होती है। और अगर बात की जाए डॉग्स के बॉन्ड की तो ये अनकंडीशनल होता है। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक रिमाइंडर है कि रियल कनेक्शन लॉजिक से नहीं इमोशन से बनते हैं। क्योंकि अगर आपके पास भी कोई पेट है तो उन्हें एक्स्ट्रा हग जरूर दीजिएगा आज घर जाकर। बिकॉज कहा जाता है कि हमारी दुनिया में ना बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इनकी दुनिया में, इनकी दुनिया हम ही हैं। यानी कि हम जो पेट पेरेंट है वो ही इनकी दुनिया है। तो सोच के जरूर देखेगा कि कितना प्यार करते हैं ये आप। और इंजॉय कीजिए इस ट्रैक को मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: For you,

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

क्या आपने कभी इस रूल के बारे में सुना है? आई नो आपने कभी नहीं सुना था, क्योंकि मैंने भी आज पहली बार सुना है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजू अंजलि, आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज मैं एक रूल बताने वाली हूँ। और रूल कुछ इस तरह से, अपनी गर्लफ्रेंड की प्लेट का खाना ज्यादा टेस्टी क्यों लगता है? कभी आपने सोचा ही ये चीज? देखिए भाई, मैं सिंगल हूँ तो मुझे कभी ये सुनने का सौभाग्य ही नहीं मिला है कि मेरी प्लेट से खाना किसी को अच्छा लगा हो। लेकिन आपको पता है, अपनी प्लेट में वही फ्राइज बहुत ज्यादा नॉर्मल लगते हैं, जो आपकी गर्लफ्रेंड की प्लेट से अगर आप ट्राई करते हो ना, वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो इस रूल के बारे में सोशल मीडिया पर हो रही है इन दिनों बहुत सारी बातें, और सोशल मीडिया पर एक क्लेम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, और क्लेम ये है कि पार्टनर की प्लेट से खाया हुआ खाना ज्यादा टेस्टी लगता है कि भाई उस खाने में ऐसा होता क्या है। और अगर बात करूँ ना साइंस की, तो साइंस ने इस बात को बहुत ही सिंपल तरीके से कन्फर्म किया है। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब खाना इमोशंस शेयरिंग और किसी अपने के साथ जुड़ा हो, तो तब हम उस खाने को ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। इसके पीछे की बस साइंस इतनी सी है। तो जिस तरह से साइंस ने इसके पीछे की कहानी बताई है ना, वहाँ तो बस एक ही चीज समझ आती है कि प्यार की असली लैंग्वेज कभी कभी आई लव यू नहीं होता, मेरी प्लेट से मत खा भी होता है। तो भाई यहाँ पर समझ आया है कि इस टेस्टी फूड के पीछे की कहानी सिर्फ और सिर्फ प्यार है। तो ऑनेस्टली प्यार है। तो भाई ये बताइए, आप भी उन्हीं लोगों में से है जो अपनी प्लेट से नहीं बल्कि दूसरों की प्लेट से खाना खाते हैं? और कई बार ना सुनते भी हैं कि अपनी प्लेट से क्यों नहीं खाते? तो भाई बता देना नेक्स्ट टाइम कि प्यार ही आपसे इतना है कि आपके प्लेट का खाना भी टेस्टी लगता है, वो टेस्ट मेरी प्लेट में कहाँ? और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।
2: सोचना है जाना कहां, जाए
1: थोड़ा फोन डाउन कीजिए और जिंदगी खुलकर जीना शुरू कीजिए। रेडियो महारानी कहता है, जिंदगी ऑनलाइन नहीं दिल से जी जाती है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियां नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है, इसलिए हाई स्पीड

0: में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
1: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
4: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो आशा।
3: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप भी नाइट आउल हैं या फिर अर्ली बर्ड, बिकॉज आज ना मैं बात करने वाली हूँ इसी टॉपिक पर, जो लोग लेट सोते हैं उनके लिए क्या फायदा है और जो लोग जल्दी सो जाते हैं ना उनके लिए क्या नुकसान है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आर्जी अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो आज मैं बात करने वाली हूँ नाइट आउल और अर्ली बर्ड के बारे में, और अगर आप भी उन लोगों में से है ना जो रात के 2 बजे बोलते हैं बस 5 मिनट और फिर जाकर कहीं सोते हैं, तो आज का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। कुछ रिसर्च में ये देखा गया है कि लेट सोने वाले कुछ लोग रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप लेट तक जागेंगे तब ही आप इंटेलिजेंट बन सकेंगे। तो इसके पीछे का रियलिटी चेक है, और रियलिटी चेक कुछ इस तरह से है। साइंस ये भी कहती है कि 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद दिमाग, मेमोरी और हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप अर्ली बर्ड हो या फिर नाइट आउल। सो माय डियर लिसनर, स्मार्ट बनना है तो सिर्फ लेट मत जगिए, अच्छी नींद भी लीजिए, और अगर आप लेट सोते हैं तो डोंट वरी, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये ऑलरेडी साइंस प्रूव कर चुका है। लेकिन अपनी स्लीप साइकिल का ख्याल रखना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता अर्ज, अर्ज
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों,
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये, सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

प्यार दिया, दो गल्ला, सुबह 7 बजे आई थी और अब 10 बजने वाले हैं, तो गल्ला तो बहुत सारी करी है आपके साथ। अब फिलहाल ये बताने आ गई हूँ कि मेरा वक्त हो गया है यहाँ से जाने का। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आज जाऊंगी तभी तो कल आऊंगी ना, तो मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो महारानी पर। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो आशा।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है. होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं.
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से. हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है.
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक. हंस टी स्टॉल गोपी कॉलोनी चौक ऋषि मार्केट नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर.

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेयर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। और यहाँ पे मैं मोनिक सबसे पहले बात करते हैं मौसम के बारे में, जहाँ इस वक्त वैसे 10:09 हो गए हैं और मौसम की बात की जाए तो 28 डिग्री सेल्सियस शहर का तापमान बना हुआ है। और कल के दिन से रिमझिम बारिश ने जहाँ गर्मी से निजात भी दिलाई और साथ ही साथ AQI भी कम होते नजर आया, यानी कि शहर की हवा साफ सुथरी होती नजर आ रही है। जहां पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए यही AQI 200 प्लस पहुंचता नजर आया था और अब 70 तक न्यूमेरिक आ गया है। शहर की हवा साफ सुथरी हो रही है लेकिन बारिश की सीजन में आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, जहां भी आने वाले एक हफ्ते तक बारिश का सीजन ही रहने वाला है तो बारिश में एक चीज का ध्यान जरूर रखें, जहां हमने देखा बहुत जगह पे वाटर लॉगिंग हो जाती है और कई जगह नहीं पता चला यार सीवेज भी ओपन हो रखे हैं, गड्ढे भी हैं, सड़क टूटी हुई है और स्पेशली दिक्कत किसको आती है, टू व्हीलर्स को। तो जहां भी आप लोग देखें प्लीज इतना हमारे माइंड में रहता है कि साइड्स में ही बेसिकली सारे मेन होल्स हैं या फिर आगे से कोई बड़ी गाड़ी जा रही है तो आप उसके स्टेप्स के हिसाब से उनको फॉलो कीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। बिकॉज पिछले ही दिनों सीवरेज में 2 बाइकर्स गिरते नजर आए थे तो एक पैदल जाता हुआ शख्स। इंजन से बचने का सिर्फ यही तरीका है कि हाँ जहां भी आप देखो कि आगे बड़ा व्हीकल जा रहा है तो उसके पीछे ताकि आपको ऐसी दिक्कत ना आए। बाकी शहरवासियों को यही कहना है कि प्लीज यार बारिश का सीजन आ गया है, प्लीज इन मेन होल्स को बंद करवा दिया जाए जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं तो शहर के लिए करता ही रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत ट्रैक।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं, जहाँ आप सब जानते हैं बारिश का मौसम है, रेनी सीजन है, और रेनी सीजन के दौरान प्लांटेशन ड्राइव्स बहुत रन की जाती हैं। भाई करनी भी चाहिए, क्यों ना करें, क्योंकि एक कोई बढ़ इतना जाता है कि इसे कंट्रोल करने के लिए जब कुछ साल लगातार प्लांटेशन ड्राइव्स की जाएंगी, उनको मेंटेन किया जाएगा, तब जाकर के शायद हम लोग कहीं एक को मेंटेन भी कर पाएंगे थोड़ा सा इजीली। लेकिन प्लांटेशन ड्राइव्स में ये ना करो यार, 10,000 पौधे लगा दिए, 1,00,000 पौधे लगा दिए, 1,000 लगा दिए, 500 लगा दिए। मैं कह रहा हूँ चाहे प्लांटेशन ड्राइव्स हर चौराहे पे एक एक ड्राइव स्टार्ट की जाए, हर गली में एक ड्राइव स्टार्ट की जाए, बेशक हर पर्सन अपने घर से एक ड्राइव लेकर गया कि एक फैमिली एक पौधा लगाए, लेकिन उस पौधे की इतनी केयर करके वो पौधा पेड़ बन सके, छांव दे सके और ऑक्सीजन भी दे सके। 1,000 पौधे लगाने को, 1,000 में से एक भी पनपता नहीं पनपता किसी को नहीं पता, इससे बेटर 6 लोग, हर फैमिली 4, 5, 2, 3 लोग तो होते ही, तो मिलकर के सारे एक पौधा लगाओ, उस पौधे को ग्रो अप करो, उसकी जितनी देखभाल करो देखभाल करो। तो ऐसे करके जितनी फैमिलीज उतने पौधे, और फिर कुछ टाइम बाद उतने पेड़ बनेंगे, उतने पेड़ बनेंगे तो छांव भी मिलेगी, पॉल्यूशन भी कंट्रोल होगा, और प्लांटेशन ड्राइव्स को इसी तरीके से सफल बनाया जा सकता है। तो प्लीज रेनी सीजन है, प्लांटेशन ड्राइव जरूर कीजिए, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट से, कि ऐसा ना हम लोग प्लांटेशन ड्राइव से फोटोज तक ही सीमित रह जाए। प्लांटेशन ड्राइव उतनी होनी चाहिए कि आने वाले 7-8 साल बाद आप तब जाकर के फोटो क्लिक कीजिए, उसको पोस्ट कीजिए कि देखिए ये पौधा लगाया था और आज जाकर के पेड़ बन गया है, उस फोटो का फायदा, इस फोटो का नहीं, हमने 1,000 पौधे लगाए। बाकी ऐसी और भी चर्चाएं करता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहे तुरेंद्र, कितना भी कर ले, कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।

0: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वॉर्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वॉर्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों हम बात करने वाले हैं सिनेमा के गलियारे से बहुत सी नई नई कहानियों के बारे में, तो कहीं होंगी चर्चाएं, कुछ नए गाने, ट्रेलर, टीजर, तो कहीं होगा नए लुक्स और तो कहीं होंगी नई जोड़ियों की एंट्री ऑन सिल्वर स्क्रीन। हिंदी सिनेमा से लेकर के साउथ इंडस्ट्री की कहानियां, तो कहीं होगा पंजाबी

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं के मैनन की नई वेब सीरीज आदर्श बाल विद्यालय, जहाँ ये कहानी 24 जुलाई को स्ट्रीम होने जा रही है उसी प्लेटफॉर्म पर और ऑफिशियली अपनी नई हिंदी कॉमेडी ड्रामा ओरिजिनल सीरीज के तौर पर अनाउंस करते नजर आए हैं। ये कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो एक बेफिक्र गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर और स्कूल के टोटल मस को सुधारने की कोशिश पर बेस्ड है। बात की जाए एक डायफंक्शनल सरकारी स्कूल में हेडमास्टर की रिफॉर्म की कोशिश से पूरी स्कूल सिस्टम की उलट पुलट चाओज और ह्यूमर शुरू हो जाता है। के मैंने एक लेजी जुगाड़ू गवर्नमेंट स्कूल हेडमास्टर ज्ञानेश्वर तिवारी के रूप में है, तो वहीं बाकी की स्टार्स अर्चना पूरन सिंह, नवीन कस्तूरिया, प्रसन्ना बिष्ट, अभिमन्यु सिंह, देवेन भोजनी और जैसी बहुत सारी कास्ट देखने को मिलेगी। शो में 7 एपिसोड हैं और ये हिंदी में है, साथ ही इंग्लिश सब टाइटल्स के साथ 200 से ज्यादा कंट्रीज टर्ट्रीज में एक साथ स्ट्रीम की जाने वाली है। इंतजार रहेगा इसके रिलीजिंग का, बाकी इसकी भी चर्चाएं होती रहेंगी। उससे पहले एक और खूबसूरत ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके और ये गाना है आप सभी के।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे
3: ये जय माता जी। माता जी ने हम कहीं ने कहूँ के वा फरे वादल फरे वायरो फरे पण एक बार बोलिया पछी मारा मित्रों आ मित्रों कदी ना फरे के हा।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात करते हैं अब भाई तेरा स्टार है के ट्रेलर के बारे में। जी हाँ, जिसको रिलीज किया गया एक मैथ का फैमिली कॉमेडी रूप में पिच किया गया है इस कहानी को। राघव जो है लीड किरदार में है और बात की जाए फुल फ्लैज लीड किरदार निभाने को बिल्कुल तैयार, जहाँ ये कहानी बहुत जल्द सिल्वर स्क्रीन पर होगी। कास्ट में राघव जुयाल है तो इम्पोर्टेंट किरदारों में संजय कपूर, चंदन रॉय, सन्याल, निहारिका, निकी अनेजा वालिया, विकल्प मेहताब, बरखा सिंह और काफी बड़ी स्टार कास्ट। विवेक अग्रवाल इस कहानी को डायरेक्ट कर रहे हैं तो म्यूजिक अमित त्रिवेदी और लिरिक्स कुमार के। भाई तेरा सुपरस्टार 30 जुलाई को सिनेमाघरों में वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाने वाली थी। भाई तेरा स्टार है क्या कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर के मेकर्स उतरे हैं इसको फ्लोर पर, देखते हैं फ्लोर टेस्ट क्या कमाल मचाने वाला है इस कहानी का। बाकी चर्चाएं होती रहेंगी, उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: यारो मुझे मुआफ करो, यारो मुझे मुआफ करो, मैं नशे में हूँ। बड़ी हसीन है जुल्फों की शाम, पी लीजिए हमारे हाथ से दो चार जाम, पी लीजिए। पिलाए जब कोई माशूक अपने हाथों से शराब।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जन

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

0: जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सत्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 की गणना अवधि 24 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है।
1: अच्छा, हमें क्या करना है?
0: अगर आपने अभी तक गणना प्रपत्र भरकर BLO को वापस जमा नहीं किया है तो अपना गणना फॉर्म सही जानकारी के साथ BLO को दें या ECI नेट ऐप के माध्यम से जमा करें ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।
1: उसके बाद
0: 31 जुलाई को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके बाद 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
2: मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.eci.gov.in पर जाएं।
0: जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ को पकड़ पूरे दिल में लगा, जो करती है कर दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो, मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
6: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
6: आवारा हूँ, आवारा।
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग सुनना न भूले, सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: पीजे सरकार।
1: कहने था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

बनेंगे। इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर, फिल्मी टॉनिक आरजे मॉनिक। यह बात करते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं वक्त हो चला है सिनेमा के कैलेंडर का, और इस कैलेंडर में अब बात करते हैं एक ऐसे आर्टिस्ट के बारे में जिसका आज बर्थडे भी है और जिसने टेलीविजन होस्टिंग से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक अलग पहचान बनाई। 90 के दौर से 2000 के दौर तक टीवी लवर्स उन्हें एक एनर्जेटिक होस्ट के रूप में याद करते रहे और बॉलीवुड फैंस उन्हें चार्मिंग और नेचुरल एक्टिंग स्टाइल से आज भी जानते हैं। जिस एक्टर की मैं बात कर रहा हूँ वो एक्टर भी है, वीजे भी है और होस्ट भी। नाम है विशाल मल्होत्रा। विशाल मल्होत्रा आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट है। एक्टर भी है, वीजे भी है और होस्ट भी। नाम है विशाल मल्होत्रा। विशाल मल्होत्रा आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, जहाँ इसकी कुछ ऐसी चर्चाएं बॉलीवुड इंडस्ट्री में बढ़िया किरदार निभाने की, टीवी होस्टिंग की, और ना जाने उनके स्टाइल के तो फैंस दीवाने। बताऊंगा और भी चर्चाएं इनके बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ और बेहतरीन से गाने ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके और ये ट्रैक आप सभी के लिए।

फिल्मी ट्विस्ट से लेकर नए सॉन्ग की लिस्ट तक सुनते रहिए फिल्मी फ्लेवर रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके पर।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ हम बात कर रहे थे आज सिनेमा के कैलेंडर में विशाल मल्होत्रा की, जो विशाल ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन होस्ट के रूप में की और म्यूजिक और यूथ शोज को होस्ट करते करते अपनी कॉन्फिडेंस और स्क्रीन प्रेजेंस से ऑडियंस का दिल जीत लिया। उसके बाद क्या, उसके बाद बॉलीवुड की तरफ कदम बढ़ाया और सपोर्टिंग रोल्स में अपनी अलग पहचान बनाई। नेचुरल एक्टिंग, फ्रेंडली पर्सनैलिटी ने उन्हें यंग ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर किया। बात करूं बॉलीवुड के मेजर रोल्स की तो इश्क विश्क, काल और सलामे इश्क में उनके किरदार को बहुत ज्यादा प्रेज मिला। इश्क विश्क में उनका महबूब का कैरेक्टर आज भी फैंस को याद है। शाहिद कपूर के दोस्त के रूप में उनकी कॉमिक टाइमिंग और स्क्रीन प्रेजेंस को काफी पसंद किया गया। एक्टिंग के साथ साथ विशाल ने एंकरिंग और एंटरटेनमेंट शोज के जरिए भी अपनी पहचान बनाई, जो आज तक वो लेगेसी आगे चलते हुए दस रहा। विशाल के ऊपर ऐसी और भी चर्चाएं करता रहूंगा, उनके सिनेमा के गलियारे की कुछ और ऐसी खास बातें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुना देता हूँ एक और बढ़िया सा गाना ओनली ऑन रेडियो महारानी।

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

मकबूलियत, लैला मजनू शेरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान दी।

के दरवाजे को खटखटाना। ये किस्सा यूं ही जारी रहा और जब पहली बार टीवी पर आने का मौका मिला कि चलिए छोटा सा करेक्टर ही सही, लेकिन मौका तो हाथ लगा, लेकिन उस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। इतने बाखूबी किरदार को निभाया कि उसके बाद तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर क्या ही टीवी शोज, क्या ही बॉलीवुड की कहानियां, तो क्या ही टीवी शोज को होस्ट करना। एक से बढ़कर एक किरदार मिलते रहे, तो एक से बढ़कर एक शोज भी मिलते रहे। पहचान बनाई तो ऐसी कि जो भी नया शो आए तो फैंस ही सोचने लग जाते थे कि यार यहाँ तो विशाल ही होने वाला। और होता भी क्या था, विशाल अकेले या फिर डुएट कोई ना कोई स्टेज होस्ट करने के इनके साथ आ ही जाता था। तो विशाल मल्होत्रा की अगर बात की जाए तो बहुत बढ़िया तरीके से इंडस्ट्री में कदम जमाया और आज भी अपने टीवी होस्ट करते शोज को बेहतरीन तरीके से नजर आते हैं। बाकी ऐसी और भी बहुत सी चर्चाएं हैं सिनेमा के गलियारों से या फिर विशाल मल्होत्रा की इस सिनेमा की जर्नी से, लेकिन अब वक्त हो चला है यहाँ से जाने का। कल फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम जगह करूंगा बहुत सी चर्चाएं सिनेमा के गलियारे से तो कुछ OTT प्लेटफॉर्म से। लेकिन ये सारी चर्चाएं अब यहाँ खत्म होती हैं, चलता हूँ और जाते आते ये खूबसूरत सा गाना मेरी ओर से आप सभी के लिए।

0: अरे भाई साहब, ये बीएलओ अभी भी घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 की गणना अवधि 24 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है।
0: अच्छा, हमें क्या करना है?
1: अगर आपने अभी तक गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को वापस जमा नहीं किया है तो अपना गणना फॉर्म सही जानकारी के साथ बीएलओ को दें या ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से जमा करें ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।
0: उसके बाद
1: 31 जुलाई को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके बाद 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
2: मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.eci.gov.in पर जाएं।
1: जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।

कभी कभी एक हंसी के पीछे छुपा होता है एक लंबा सफर, एक ऐसा सफर जहां आंसुओं ने भी अपना रोल निभाया होता है। आज हम बात कर रहे हैं उस इंसान की जो स्क्रीन पर आते ही चेहरे पर मुस्कान ला देता है, और उनका नाम है राजपाल यादव। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की। साल 1971, उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर, एक छोटा सा गांव, सिंपल जिंदगी और बड़े सपने, यहीं पैदा हुए राजपाल यादव। उनका बचपन कोई फिल्मी नहीं था, ना ग्लैमर ना स्पॉटलाइट, बस एक आम जिंदगी जहां सपने देखना भी एक लग्जरी होती है। लेकिन राजपाल के अंदर एक अलग सी एनर्जी थी। वो लोगों को ऑब्जर्व करते थे, उनकी आदतें, उनकी बोली, उनका अंदाज, शायद वही ऑब्जर्वेशन बाद में उनकी कॉमेडी का बेस बना। स्कूल के बाद उन्होंने थिएटर की तरफ कदम बढ़ाया। ये आसान नहीं था, क्योंकि एक्टिंग को करियर बनाना उस वक्त एक रिस्की डिसीजन माना जाता था, लेकिन राजपाल यादव ने रिस्क लिया। वो लखनऊ के भारतीय नाट्य अकेडमी गए और फिर दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तक पहुंचे। गांव से निकला एक लड़का अब एक्टिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार था, और फिर मुंबई ने उन्हें बुला लिया। और कैसे बने वो सुपरस्टार, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर सुनते रहिए कामयाबी की उड़ान। द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके,
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक गिलास तो पीती जा। सुन,

0: हर कॉमेडियन की लाइफ में एक फेज होता है जहां हंसी सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं होती, वो स्ट्रगल को सरवाइव करने का तरीका बन जाती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की। मुंबई सपनों का शहर, लेकिन राजपाल यादव के लिए ये शहर पहले एक टेस्ट था। छोटे रोल्स, साइड कैरेक्टर्स और कभी कभी तो सिर्फ एक दो सीन्स। उन्होंने टीवी शोज में काम किया, जैसे मुंगेरी के भाई नौरंगी लाल। उनकी हाइट और उनका यूनिक फेस इंडस्ट्री के टिपिकल हीरो स्टैंडर्ड्स में फिट नहीं होता था, लेकिन राजपाल ने इसी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। उन्होंने डिसाइड किया, मैं हीरो नहीं बनूंगा, मैं याद रहने वाला कैरेक्टर बनूंगा। और धीरे धीरे लोग उन्हें नोटिस करने लगे। उनकी टाइमिंग, उनका एक्सप्रेशन और वो नेचुरल कॉमिक फील सब अलग था। स्ट्रगल लंबा था, लेकिन राजपाल रुकने वालों में से नहीं थे। उन्हें बस एक ब्रेक चाहिए था, और वो ब्रेक आया एक अनएक्सपेक्टेड रोल के साथ। कौन सा था वो रोल, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए गाना। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, और मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

कभी कभी एक रोल पूरी जिंदगी बदल देता है, और राजपाल यादव के साथ भी ऐसा ही हुआ। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की। राजपाल यादव के लिए वो जिंदगी बदलने वाला रोल था ना, वो एक नहीं बल्कि बहुत सारे थे। 2000 का दौर, बॉलीवुड में कॉमेडी का गोल्डन फेज, फिल्म हंगामा, चुप चुप के, गरम मसाला, भूल भुलैया, और हर जगह एक नाम कॉमन था, राजपाल यादव। उन्होंने सिर्फ कॉमेडी नहीं की, उन्होंने कैरेक्टर्स क्रिएट किए, चाहे वो छोटा पंडित हो या एक कंफ्यूज नौकर, हर रोल में उनकी एक अलग आइडेंटिटी होती थी। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनका इनोसेंस। उनकी कॉमेडी लाउड नहीं होती थी, वो सिचुएशन और एक्सप्रेशन से आती थी। ऑडियंस को लगता था ये बंदा एक्टिंग नहीं कर रहा है, ये सच में ऐसा ही है, और वही उनकी जीत थी। राजपाल यादव अब सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे, वो बॉलीवुड के मोस्ट लव्ड कॉमेडियंस में से एक बन चुके थे। और आगे क्या क्या चैलेंजेस उनकी लाइफ में आए और कैसे करा उन्होंने कमबैक, करेंगे इन सब चीजों के बारे में बात, मगर थोड़ी देर बाद। अभी आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: थ्री टाइप्स ऑफ ड्राइवर्स ऑन इंडियन रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल द बदमाश ड्राइवर्स, जो रोड पे अपनी थार या स्कॉर्पियो ऐसे चलाते हैं जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस का ऑडिशन दे रहे हो, बट अब इन्हें कौन ही बताए इट्स बेटर टू रीच होम सेफ देन अर्ली। सेकेंडली वी हैव द गर्ली पॉप, जिन्हें रोड पे भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है, बट व्हाट इफ वी ऑल स्टार्टेड ड्राइविंग मोर डिम्योर एंड माइंडफुली। थर्डली जिनका एक मिनट भी बाबू सोना से दूर रहने से निकल जाता है रोना, लाइक सर कम ऑन, इट्स बेटर टू लीव द मैसेज डिलीवर्ड देन फ्रॉम गोस्टिंग फॉर एवर। तो इन ड्राइवर्स से सतर्क रहो, ड्राइव सेफली, स्माइल करते रहो यार।

जिंदगी सिर्फ हंसी का नाम नहीं, कभी कभी वही जिंदगी सबसे टफ सीन्स भी लिख देती है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और कामयाबी की उड़ान में आज हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की। सक्सेस के बाद भी राजपाल यादव की लाइफ में चैलेंजेस आए, कुछ पर्सनल और लीगल इश्यूज ने उनके करियर को स्लो कर दिया। वो फेज उनके लिए आसान नहीं था, इंडस्ट्री भी फास्ट मूव करती है और जब आप रुकते हो तो लोग आगे निकल जाते हैं। लेकिन राजपाल ने हार नहीं मानी, उन्होंने वापस काम शुरू किया, छोटे रोल से ही सही बट काम कंसिस्टेंट था। कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने काम किया और उन्होंने प्रूव किया कि असली आर्टिस्ट वही होता है जो गिर कर भी खड़ा हो जाए। आज जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं ऑडियंस स्माइल कर देती है, क्योंकि कनेक्शन अब भी वही है और कुछ हंसी कभी कभार दिल से आती है। और मेरे ख्याल से राजपाल यादव को देखते ही हम सबके अंदर जो स्माइल है वो हमेशा दिल से आती है। तो करेंगे राजपाल यादव की लाइफ के बारे में और भी बात, कैसे उन्होंने स्ट्रगल्स को फेस किया इसके बारे में और भी बात करेंगे, मगर थोड़ी देर बाद। अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

सलामत सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकलें, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहनें, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

कुछ लोग सिर्फ एंटरटेन नहीं करते, वो लोगों के मूड को चेंज कर देते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड वंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं वन एंड ओनली राजपाल यादव की। राजपाल यादव की जर्नी सिर्फ कॉमेडी की कहानी नहीं है, ये कहानी है स्ट्रगल की, सेल्फ बिलीफ की और अपनी यूनिकनेस को एक्सेप्ट करने की। उन्होंने कभी अपने आप को चेंज नहीं किया, ना ही किसी और जैसा बनने की कोशिश की। उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनी पहचान बना लिया, इसलिए उनकी कॉमेडी हमेशा रियल लगती है। आज जब भी उनका कोई भी सीन टीवी पर आता है, लोग रुक कर देखते हैं, क्योंकि राजपाल यादव सिर्फ जोक्स नहीं सुनाते, वो एक फीलिंग क्रिएट करते हैं। एक ऐसी फीलिंग जो थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर जिंदगी की टेंशन भुला देती है। और शायद इसीलिए राजपाल यादव सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं, एक रिलीफ है। एंड राजपाल यादव की कोई भी मूवी की बात करी जाए तो वो हमेशा कम पड़ जाएगी, क्योंकि उनके रोल्स हमेशा से अमेजिंग थे, भले ही छोटा पंडित हो या फिर हो भांडिया या फिर हो मारतंड फ्रॉम द मूवी ढोल। तो राजपाल यादव के बारे में थी ये कहानी, और आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। नंबर है हमारा 9654896896। फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए कामयाबी की उड़ान में हम और भी स्टोरीज लेकर आते रहेंगे, और आप किसके बारे में स्टोरी सुनना चाहते हैं आप मैसेज करके भी बता सकते हैं। नंबर फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9654896896। फिलहाल आप सभी के लिए ये गाना, मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आप सभी से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरिंदर, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

गाना बहुत खूबसूरत है क्योंकि ये हमें उस फेज की याद दिलाता है जब दिल चाहता है लेकिन जिंदगी कहती है थोड़ा सब्र, बेसब्रियां। और इसी एहसास के साथ आप सभी का स्वागत है शो में, क्योंकि मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए बिजनेस अनप्लग्ड सिर्फ रेडियो महारानी पर। बिजनेस अनप्लग्ड एक ऐसा स्पेस है जहाँ सक्सेस को स्टेज पर खड़ा करके ताली नहीं बजती बल्कि यहाँ सक्सेस को समझा जाता है। यहाँ बात होती है उस जर्नी की जो स्पॉटलाइट से पहले शुरू होती है। यहाँ हम सिर्फ ये नहीं पूछते कि कितना कमाया बल्कि ये पूछते हैं कैसे कमाया। बिजनेस अनप्लग्ड उन लोगों के लिए है जो मानते हैं कि बिजनेस सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होता, ये पेशेंस, डिसीजन और डिसिप्लिन का टेस्ट होता है। इस शो में हम उन कहानियों को खोलते हैं जहाँ ग्रोथ धीरे धीरे होती है लेकिन स्ट्रांग होती है, जहाँ शॉर्टकट अवेलेबल होता है लेकिन चूज नहीं किया जाता है। और आज की कहानी भी एक ऐसी ही सोच से जुड़ी हुई है जहाँ सक्सेस लाउड नहीं था लेकिन सस्टेनेबल था। एक ऐसी कहानी जो ये दिखाती है कि अगर फाउंडेशन सही हो तो बिजनेस सिर्फ बड़ा नहीं होता, रिस्पेक्टेबल भी होता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप ये समझेंगे कि ये सिर्फ एक कंपनी की स्टोरी नहीं है, ये एक माइंडसेट की स्टोरी है। एक ऐसा सफर जिसमें रिजल्ट्स तुरंत नहीं आए लेकिन डायरेक्शन कभी कंफ्यूज नहीं हुई। और जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे आप महसूस करेंगे कि यहाँ स्ट्रगल सिर्फ पैसे का नहीं था, ये स्ट्रगल था सही और आसान के बीच चॉइस का। तो जरा सा ठहरिए क्योंकि इस सफर का अगला मोड़ पूरी कहानी का टोन सेट कर देता है। और अब आप ये बताइए कि कौन सा गाना सुनने वाले हैं। चलिए आपको मैं ही सुना देती हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रैक, और इस ट्रैक के बाद लौटूंगी और बताऊंगी कि आज मैं बिजनेस अनप्लग में किसको अनप्लग करने वाली हूँ।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

वंस अगेन वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है बिजनेस अनप्लग्ड। और कभी कभी बिजनेस स्टोरीज कंपनी से शुरू नहीं होती, वो एक आदमी से शुरू होती है। एक ऐसे आदमी से जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल नॉर्मल हो, जिसके पास न पावर होती है न पैसा, सिर्फ एक सोच होती है, काम सही होना चाहिए बॉस। और इस कहानी के सेंटर में एक ऐसे इंसान है जो कभी लाउड नहीं रहे, जो कभी स्पॉटलाइट के पीछे नहीं भागे, लेकिन उनका हर डिसीजन बहुत काम था। मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग, सिंपल फैमिली, डिसिप्लिन और पढ़ाई पर फोकस। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद इन्होंने सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम शुरू किया। और यहीं पर उन्होंने एक चीज क्लियरली नोटिस की, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ ट्रस्ट की। उस वक्त का इंडिया याद कीजिए, टेक्नोलॉजी एक नया वर्ड था, सॉफ्टवेयर को बिजनेस के तौर पर सीरियसली नहीं लिया जाता था। और इसी सिस्टम के बीच ये आदमी हर रोज एक सवाल पूछता था, अगर इंडियन इंजीनियर्स वर्ल्ड क्लास हैं, तो उन्हें वर्ल्ड क्लास काम क्यों नहीं मिलता है। उनके लिए बिजनेस का मतलब जल्दी पैसे कमाना नहीं था, इनके लिए बिजनेस का मतलब था एक ऐसा सेटअप बनाना जहां लोगों के साथ गलत ना हो। इस थिंकिंग के साथ इन्होंने जॉब सिक्योरिटी छोड़ी, कंफर्ट छोड़ा और एक ऐसा डिसीजन लिया जो उस टाइम बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं लगता था। पैसे बहुत लिमिटेड थे, सपोर्ट सिर्फ कुछ लोगों का था, और फिर भी इन्होंने डिसाइड किया कि अगर काम शुरू करना है तो अपने रूल्स के साथ करना है। रूल सिंपल थे, शॉर्टकट नहीं, झूठ नहीं, प्रेशर में गलत डिसीजन नहीं। इस सफर की शुरुआत में किसी को आइडिया नहीं था कि ये डिसीजन कहाँ तक जाएगा, ना उन्हें खुद को पता था कि आगे क्या होगा। बस इतना क्लियर था कि जो भी होगा वो सही तरीके से होगा। और इसी पॉइंट पर ये कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ एक इंसान की सोच नहीं, एक पूरा सिस्टम शेप लेना शुरू करता है। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल करो।
2: इतनी

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

है फ्रॉम द मूवी काई पोचे और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। अब तक जो कहानी आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड में, शायद आप समझ ही गए होंगे कि ये किसी ऑर्डिनरी इंसान की स्टोरी तो नहीं है भाई। इस कहानी का नाम है एन आर नारायण मूर्ति और जिस सपने की बात हो रही है वो आगे चलकर बना इन्फोसिस। 1981 का वक्त था, इंडिया में प्राइवेट कंपनीज के लिए सिस्टम ईजी नहीं था, रूल्स कॉम्प्लेक्स थे, प्रोसेस स्लो था और टेक्नोलॉजी बिजनेस को अभी भी डाउट की नजर से देखा जाता था। इस एनवायरमेंट में नारायण मूर्ति ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक डिसीजन लिया, जॉब सिक्योरिटी छोड़कर खुद का काम शुरू करने का। शुरुआत हुई सिर्फ 10,000 से, जो उनकी वाइफ सुधा मूर्ति ने अपनी पर्सनल सेविंग से दिए थे। ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, ना कोई गारंटी, सिर्फ एक बिलीव। अगर इंटेंशन सही है तो रिस्क लेना वर्थ इट है बॉस। इसी छोटी सी शुरुआत से इन्फोसिस का बर्थ हुआ। न बड़ा ऑफिस, न फैंसी सेटअप, न फॉरेन क्लाइंट्स की लाइन, बस कुछ लोग, एक क्लियर थॉट और बहुत सारा पेशेंस। शुरुआती दिनों में क्लाइंट्स मिलना मुश्किल था, कभी पेमेंट लेट होती थी, कभी काम ही नहीं होता था और कई बार सिचुएशन ऐसी होती थी जब कंपनी को चलाना डेली स्ट्रगल बन जाता। लेकिन एक चीज थी जो नारायण मूर्ति ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं की, एथिक्स। उनका मानना था कि अगर फाउंडेशन गलत होगी तो बिल्डिंग चाहे कितनी भी बड़ी हो एक दिन गिर ही जाएगी। इन्फोसिस धीरे धीरे ग्रो कर रही थी लेकिन बिना शोर के, न हेडलाइंस, न हाइप, बस काम और काम के साथ ट्रस्ट बिल्ड होता गया। एम्प्लॉय को रिस्पेक्ट मिला, उनकी ग्रोथ पर फोकस हुआ और एक ऐसा कल्चर बना जो उस टाइम के इंडिया में रेयर माना जाता था। लेकिन हर ग्रोथ के साथ प्रेशर भी बढ़ता गया और इन्फोसिस के सफर में भी एक ऐसा फेज आया जब सिर्फ बिजनेस डिसीजंस नहीं इंसानियत का टेस्ट होना था। ऐसा मोमेंट जहां सवाल ये नहीं था कि कंपनी बचेगी या नहीं, सवाल ये था कि प्रिंसिपल बच पाएंगे या नहीं। और यहीं से ये कहानी अपना सबसे टफ टर्न लेती है। क्या होता है आगे ये मैं बताऊंगी आपको, लेकिन वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड सिर्फ रेडियो महारानी पर। मैं हूं आपके साथ गीत और हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बिजनेस सफर की जो सिर्फ ग्रोथ का नहीं प्रिंसिपल का टेस्ट भी था। अब तक हम समझ चुके हैं कि नारायण मूर्ति और इंफोसिस की कहानी एक स्मूथ सक्सेस स्टोरी नहीं थी, एक कहानी डिसीजन बाय डिसीजन बनी थी। और अब हम आ गए हैं उस फेज पर जहां बिजनेस का फ्यूचर बैलेंस शीट से ज्यादा वैल्यू पर डिपेंड करता था। इंफोसिस का इनिशियल फेज काफी अनस्टेबल था, क्लाइंट्स इरेगुलर थे, पेमेंट्स लेट होती थी और कैश फ्लो हमेशा टाइट। और फिर आया वो मोमेंट जो हर सेटअप को तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है, सैलरी के क्राइसिस। फाउंडर के सामने चॉइस क्लियर थी, डिले करें, कट करें या कॉम्प्रोमाइज करें। बट नारायण मूर्ति ने एक लाइन ड्रॉ कर दी, एम्प्लॉय फर्स्ट ऑलवेज। चाहे खुद को डिस्कम्फर्ट हो, चाहे ग्रोथ स्लो हो, सैलरी टाइम पर जाएगी बॉस। दिस डिसीजन चेंज्ड एवरीथिंग। यहीं पर इंफोसिस सिर्फ एक कंपनी नहीं रही, यहीं पर एक कल्चर बिल्ड हुआ, अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट, अ कल्चर ऑफ फेयरनेस, अ कल्चर वेयर पीपल मैटर्ड। लेकिन प्रेशर यहीं पर खत्म नहीं हुआ। जैसे जैसे इंफोसिस ग्रो करने लगी, एक्सपेक्टेशन और सिक्योरिटी भी बढ़ने लगी। क्लाइंट्स बढ़ रहे थे, डिलीवरी स्टैंडर्ड्स टाइट हो रहे थे और हर स्टेज पर शॉर्टकट का ऑप्शन टेबल पर था। दिस इज वेयर मोस्ट कंपनीज ब्रेक, दिस इज वेयर प्रिंसिपल स्लोली फेड। बट इंफोसिस ने यहाँ पर भी एक डिफरेंट पाथ चूज किया। और अब सवाल ये है, क्या ये पाथ लॉन्ग रन में काम करता है? क्या वर्ल्ड एथिक्स का रिवॉर्ड करता है? स्टे विद मी बिकॉज व्हाट हैपेंड नेक्स्ट टर्न इंफोसिस इनटू अ ग्लोबल नेम। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है

0: वेलकम अगेन, आप सुन रहे हैं बिजनेस अनप्लग्ड सिर्फ रेडियो महारानी पर और मैं आपके साथ गीत बनी हुई हूँ और हम आगे बढ़ रहे हैं उस बिजनेस जर्नी में जहाँ सही फैसले धीरे धीरे अपना असर दिखाने लगते हैं। अब तक आपने सुना कि इन्फोसिस ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, शॉर्टकट्स नहीं लिए और पीपल फर्स्ट अप्रोच पर टिके रहे और अब सवाल ये था क्या दुनिया इस अप्रोच को रिवॉर्ड देगी। टाइम के साथ जवाब आने शुरू हुए, क्लाइंट सिर्फ काम के लिए नहीं ट्रस्ट के लिए इन्फोसिस को चूज करने लगे, प्रोजेक्ट्स रिपीट होने लगे, रेपुटेशन क्वाइटली बिल्ड हो रही थी और फिर वो फेज आया जब इंडिया के बाहर इन्फोसिस सीरियसली नोटिस की जाने लगी। ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम, इंटरनेशनल एक्सपोजर और एक क्लियर मैसेज, इंडिया सिर्फ लो कॉस्ट टैलेंट नहीं हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी डिलीवर कर सकता है। इन्फोसिस का नाम धीरे धीरे इंडिया के आईटी इकोसिस्टम का सिंबल बन गया। एम्प्लॉय को ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स के लिए ये सिर्फ जॉब नहीं करियर ट्रांसफॉर्मेशन था। दिस वॉज नॉट ओवरनाइट सक्सेस, दिस वॉज अर्न्ड सक्सेस। और फिर एक ऐसा मोमेंट आया जो सिर्फ इन्फोसिस के लिए नहीं पूरे इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। अ मोमेंट जब दुनिया के बिगेस्ट मार्केट्स ने इंडिया की एक कंपनी पर पब्लिकली ट्रस्ट दिखाया। यहाँ से इन्फोसिस की स्टोरी सिर्फ ग्रोथ की नहीं रही, ये क्रेडिबिलिटी की स्टोरी बन गई। लेकिन हर ग्लोबल रिकॉग्निशन के साथ प्रेशर भी नेक्स्ट लेवल का होता है। स्केल बढ़ता है, एक्सपेक्टेशन डबल होती है और फिर एक नया चैलेंज सामने खड़ा होता है। क्या जो वैल्यू शुरुआत में थी वो इतनी बड़ी कंपनी में भी सर्वाइव कर पाएगी? बिकॉज जब कंपनी छोटी होती है प्रिंसिपल फॉलो करना ईजी होता है, जब कंपनी ग्लोबल हो जाए तब वो प्रिंसिपल सबसे बड़ा टेस्ट फेस करते हैं। इन्फोसिस ने दुनिया को ये दिखाया कि इंडिया सिर्फ टैलेंट सप्लाई नहीं करता, इंडिया ट्रस्ट भी डिलीवर करता है। और नारायण मूर्ति ने ये प्रूव किया कि फाउंडर का सबसे बड़ा रोल सिर्फ कंपनी बनाना नहीं होता, कंपनी का कैरेक्टर बनाना होता है। और जब इस कहानी को हम देखते हैं तो ये सिर्फ बिजनेस स्टोरी नहीं लगती, ये एक रिमाइंडर है कि जब आप प्रेशर में भी सही चॉइस लेते हैं तो सक्सेस सिर्फ मिलती नहीं है, वो रिस्पेक्ट के साथ मिलती है। बिजनेस अनप्लग्ड का मतलब ही यही है, सक्सेस को अनप्लग करके समझना। और अगर आप भी अपने काम में, अपने डिसीजंस में थोड़ा सा भी ये सोच ले आए कि मैं सही क्या कर रहा हूँ, तो मतलब ये कहानी काम कर गई। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड और अभी वक्त है मेरा आपसे इजाजत लेने का। आप सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके। कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।
1: ईश्वर, हम माफी मांगते हैं कि हमने अपनी सारी ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया और हमेशा आपसे ज्यादा और ज्यादा की आस करते रहे। वी आर सॉरी, पर आज हम हाथ जोड़ के उन खुशियों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।

मुझको पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो है मन उदास का पे आवाज फिर भी मैं जोड़ के हाथ जो भी है पास है उस पे नाज बस कहना है थैंक्स लॉट।

क्या आपने कभी नोटिस किया है जब कोई ज्यादा सुंदर लगे, ज्यादा खुश लगे या फिर ज्यादा चमकने लगे तो कोई ना कोई बोल ही देता है, अरे नजर लग जाएगी और बस एक काला टीका या तो कान के पीछे या फिर गाल पर लगा ही दिया जाता है। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात करेंगे उस काले निशान की जो दिखने में छोटा जरूर है पर माना जाता है बहुत पावरफुल, वही नजर का टीका। कहा है काला सा निशान पर नीयत बहुत साफ। अब बात कर ही रहे हैं नजर के टीके के बारे में तो जान लेते हैं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आखिर कहां से आया। पर इससे पहले सवाल ये है, क्या नजर सच में लगती है या सिर्फ डर की कहानी है? तो माना जाता है कि नजर का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंडिया में नहीं, मिडल ईस्ट, ग्रीस, टर्की, इवन इटली, हर जगह मिलता है। कहीं ब्लू आई, कहीं ब्लैक डॉट और कहीं काजल। मतलब सीधा सा है कि इंसान हमेशा से मानता आया है कि नेगेटिव अटेंशन का असर जरूर पड़ता है। वो कहा है कि जहां तारीफ ज्यादा हो जाए वहीं नजर का डर पैदा होता है। पर अब सवाल ये है कि काला रंग ही क्यों? इस बारे में बात करेंगे लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
3: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
4: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

क्या कभी सोचा है कि टीका हमेशा काला ही क्यों होता है? 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं नजर के टीके के बारे में, जान रहे हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और आखिर इसका रंग काला ही क्यों होता है। तो कहा जाता है इंडियन बिलीफ के मुताबिक काला रंग नेगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व करता है, इसलिए बच्चों को काला धागा, गाल पर काला टीका, कान के पीछे काला काजल लगाया जाता है। कहा जाता है कि काले रंग से ब्यूटी को थोड़ा इम्परफेक्ट बना दिया जाता है, ताकि बुरी नजर भी सोच में पड़ जाए कि कहाँ जाऊं। वो कहा है कि थोड़ी सी कमी अक्सर बड़ी बला से बचा लेती है। अब रंग की तो बात कर ली, लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर नजर का बच्चों के साथ क्या कनेक्शन है। तो कहा जाता है कि सबसे पहले नजर अगर किसी को लगती है तो वो है बच्चे। सोच के जरूर देखिएगा, जब भी कभी हम किसी न्यूबॉर्न बेबी को देखते हैं, उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते हैं, तो बोलते हैं बड़ा ही प्यारा है, और माँ तुरंत टीका लगा देती है। ये माँ का डर नहीं, माँ की दुआ होती है। वो कहा है कि माँ का लगाया टीका दुआ बनकर साथ चलता है। लेकिन अगर बात की जाए नजर की, तो नजर ने शादी और रस्मों को भी नहीं छोड़ा। इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी कॉन्फिडेंट।

वो कहा है कि जब खुशी पब्लिक हो जाए तो हिफाजत प्राइवेट रखी जाती है। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा, जहाँ कल्चर कारवा का आज का सफर आपको ले आया है काले टीके के कॉन्सेप्ट के पास। तो अक्सर माना जाता है अगर कोई फंक्शन है जहाँ नजर का डर सबसे ज्यादा होता है तो वो है शादी। दुल्हन को काजल, दहेज के साथ नजर उतारना, शादी के बाद नींबू मिर्ची, ये बेहद जरूरी होते हैं। लोग भले ही इसे सुपरस्टिशियस बताएं, पर असल में तो ये प्रोटेक्शन का आइडिया था। शादी के टाइम नजर लगना बेहद कॉमन है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि शादी में एक रस्म भी होती है जिसे कहा जाता है नजर उतारने की रस्में। यहाँ सिर्फ काला टीका ही नहीं बल्कि नजर उतारने का एक खास तरीका भी होता है, जैसे कहीं कहीं नमक मिर्ची घुमाना, लाल कपड़ा पहनाना, सरसों के दाने के साथ कभी पानी में फूंक मारना। लॉजिक चाहे ना मिले पर तसल्ली जरूर मिलती है। वो कहा है कि कुछ चीजें दिमाग के लिए नहीं दिल के लिए होती हैं। अब बात कर ही रहे हैं लॉजिक की तो थोड़ा साइंस भी जान ही लेते हैं। अब जब रस्मों की बात सुन ही ली है तो थोड़ा साइंस की भी सुन लेते हैं। तो कहा जाता है साइकोलॉजी के हिसाब से जब कोई बार बार नेगेटिव बातें सुनता है तो कॉन्फिडेंस कम हो सकता है और नजर का कॉन्सेप्ट लोगों को इमोशनली वीक बनाता है। वो कहा है कि हर बात साइंस से नहीं, कुछ बात संवेदना से समझी जाती है। और अगर बात की जाए नजर की तो नजर तब से लेकर आज तक हर जमाने में देखने को मिली, आज के जमाने में भी नजर लगती है, बस फॉर्म थोड़ा सा बदल गया है। साइंस मीडिया पर लाइक्स के थ्रू, कॉमेंट्स, कंपेरिजन, ये सब नजर का मॉडर्न वर्जन आ गया है, इसलिए लोग बोलते हैं नजर से बच के। वो कहा है कि आज नजर आंखों से कम स्क्रीन से ज्यादा लगती है। नजर से जुड़े और भी फैक्ट्स हैं, बात करेंगे उनके बारे में भी, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा, पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

कल्चर कारवा सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे अंजलि, और आज हम बात कर रहे हैं नजर के काले टीके के बारे में। तो कहा जाता है औरतों ने इस बिलीफ को जिंदा रखा। माँ, दादी, नानी, उनकी बातों में डर भले ही था पर केयर उतनी ही थी। नजर का टीका उनका साइलेंट प्रोटेक्शन था। वो कहा है कि जब घर की औरतें टीका लगाती हैं तो समझ लो कि दुआ साथ भेजती हैं। अब बात ये है, क्या नजर सच में होती है? तो शायद हाँ शायद नहीं, पर ये जरूर सच है कि ये किसी की परवाह का निशान होती है। वो कहा है कि नजर का टीका काला हो सकता है पर सोच हमेशा रोशन होती है। कल्चर कारवा के आज के सफर में हमने बात की एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो बहुत पुराना है लेकिन आज भी लोगों के साथ चलता है। हमारी जिंदगी का हर रोज का पहलू इसी से होकर गुजरता है। आज हमने बात की काले टीके के बारे में और जाना कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी की केयर करना एक छोटे से निशान के साथ। कल फिर मिलेंगे कल्चर कारवा के सफर में एक नई कहानी के साथ, एक नए बिलीफ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और याद रखिए, जो प्यार दिल से दिया जाए उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे भाई साहब, ये बीएलओ अभी भी घर घर क्यों आ रहे हैं?
3: क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 की गणना अवधि 24 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है।
2: अच्छा, हमें क्या करना है?
3: अगर आपने अभी तक गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को वापस जमा नहीं किया है तो अपना गणना फॉर्म सही जानकारी के साथ बीएलओ को दें या ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से जमा करें, ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।
2: उसके बाद
3: 31 जुलाई को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके बाद 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
4: मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.eci.gov.in पर जाएं।
3: जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: टेम्परेचर भले ही 30 डिग्री हो बाहर का, बट इट्स स्टिल फीलिंग एज इफ इट्स 37 डिग्री सेल्सियस। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। शाम हो गई है, दिन भर मौसम अच्छा रहा, दोपहर में थोड़ी सी धूप आ गई, बट अभी भी ठीक है मौसम। कई कई जगह पर छींटे पड़ रहे हैं, कभी ड्रिजलिंग हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। और अभी मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि मेरा शो शुरू हो रहा है, तो गाना चलाऊंगा एक और फिर वापस आकर बात करते हैं। तो गाने का नाम है अनस्टॉपेबल, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर।

दिल्ली NCR में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। किस चीज का येलो अलर्ट है, करेंगे इसके बारे में बात। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड आज का मौसम थोड़ा सा ऑसम है, मानते कि नहीं। वो कल मैं बात कर रहा था चाय पकोड़े वाला मौसम, हाँ सुबह से ही था चाय पकोड़े वाला मौसम, और आज तो वैसे भी मंगलवार है, काफी सारे लोग आज फास्ट पर भी होंगे तो उनके लिए थोड़ा सा बुरा फील होता है मुझे, क्योंकि देखो फास्ट में ना भूख लगती है और फिर शाम को वो लोग जब व्रत खोलेंगे फिर उसके बाद वो कुछ भी खा सकते हैं, बट नहीं समोसे नहीं खा पाएंगे वो लोग, तो हम लोग तो खा सकते हैं अभी समोसे, एक्चुअली मेरा फास्ट नहीं है। एंड अभी मैं एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि दिल्ली NCR में येलो अलर्ट है, साथ ही साथ इंडियन वर्क कल्चर के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या आपके ऑफिस में भी ऐसा कुछ होता है, वर्क कल्चर खराब है? क्या आपके ऑफिस में चापलूसी की जाती है? करेंगे इन सब चीजों के बारे में बात। और इसी बीच अगर आप लोगों को मुझसे बातें करनी है तो मेरा एक नंबर है 9654896896, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा वो ये कि एक इंडियन इंजीनियर ने AI टूल की मदद से 25 लाख रुपए कमा दिए, कैसे करा ये कारनामा, करेंगे इन सब चीजों के बारे में बात। और अगर फरीदाबाद में बारिश की वजह से आप लोग कहीं पर भी फंसे हैं या फिर कहीं पर भी आपको वाटर लॉगिंग दिख रही है तो आप लोग मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं सब कंसर्न डिपार्टमेंट को भी ट्राई करूं कांटेक्ट करने की, और साथ ही साथ मैं बाकी पब्लिक को बता दूं कि हाँ यहाँ पर पानी भरा हुआ है तो आप लोग यहाँ से मत जाइए। और अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने चला रहा हूँ। उन्हीं में से इमरान हाशमी की मूवी का ये गाना सुनिए, इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वॉन्टेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली एनसीआर में खासकर बोल दिया गया है कि येलो अलर्ट जारी हो गया है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एल नीनो इफेक्ट की वजह से ये जो बारिश है ना इतनी स्ट्रांग नहीं है, नहीं तो बोला गया था कि आज 21 तारीख को सुबह से बहुत तेज़ वाली बारिश आएगी। वैसे तो रात को 2:30 बजे से सुबह 4:30 बजे तक बहुत तेज़ बारिश आई थी, मुझे कैसे पता, नींद खुल गई थी मेरी, बाहर आवाज़ आई, बिजली चमकी थी। और ऐसा ही आने वाले कुछ दिनों के लिए बोला गया है मौसम विभाग द्वारा, यानी कि आज रात से लेके कल रात तक ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। तो दिल्ली एनसीआर वालों, जो भी मुझे सुन रहा है, फरीदाबाद वालों, आप लोगों के लिए खास कर ये बात है कि 21 और 22 जुलाई को दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट है, जिसमें भारी बारिश हो सकती है और गरज भी सकते हैं, बादल चमक भी सकते हैं, बादल और

लोगों को अपने मन में चीज़ रखनी है। और साथ ही साथ बता दो आपको टेम्परेचर ज़्यादा गिरावट नहीं दिखेगी, आपको मैक्सिमम 30 डिग्री या फिर मैं मान सकता हूँ 28 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाएगा, बट उससे कम नहीं होगा। आज तो उमस थी, बट हम लोग अब प्रे करेंगे कि कल के दिन उमस ना हो, कल के दिन बारिश पूरे दिन चल जाए तो अच्छा ही है। मतलब वो छोटी छोटी वाली बारिश की बूंदें होती है ना, वो अच्छी लगती है। तो आप लोग बताइए आप लोगों को बारिश पसंद है या नहीं। नंबर है जी 9654896896। वापस आकर वाटर लॉगिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जल भराव काफ़ी सारी जगह पे हो रहा है।

0: नहीं है।
1: सदा सुरक्षित रहो, अरोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
2: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
3: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: फरीदाबाद में अभी काफी सारे ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पर पानी की समस्या बनी हुई है। नहीं नहीं, पानी आ नहीं रहा है, आसमान से तो बरस रहा है, जमा भी हुआ है गलियों में, बट आ नहीं रहा है पानी नल से सप्लाई में। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और अभी मैं खासकर वाटर लॉगिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो, ऐसा नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही है, वो लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, नालों की सफाई करी जा रही है। आज ही दोपहर में मैंने देखा था मथुरा रोड पे सेक्टर 31 के पास वो जो सीवर सकर मशीन होती ना, सुपर सकर कहते हैं या फिर सीवर सकर कहते हैं, जो भी कहते हैं उस मशीन को, जो बड़ा सा टैंकर होता है और एक पाइप डाला जाता है नीचे, तो उससे सफाई करी जा रही थी और वहां पर पानी जो जमा था वो तुरंत गायब भी हो गया। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, बट उसी समय मेरी नज़र पड़ी एक और नाले पे, नाला नहीं कहूँगा मैं उसको, कहूँगा ड्रेन, जहाँ से पानी एग्जिट होता है। रोड पे पानी अगर जमा है ना तो सारा का सारा एग्जिट वहीं से होगा, और वहाँ पर प्लास्टिक की बॉटल्स, पन्नियाँ एंड कुरकुरे के पैकेट, ये सब नमकीन के पैकेट पड़े हुए थे, तो ये तो ऑब्वियस है ना।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।
0: पड़ जाता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आपको पता है क्या, इंडिया में मॉनसून के बादल छाए हुए हैं, मगर पता नहीं दिल्ली एनसीआर में क्या हो रहा है, मतलब इसी साइड बारिश बहुत कम है, और ये बारिश अगर कम होगी तो फसलों पर भी असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। खैर, आपको बता दूँ तीन रीज़न है जिसकी वजह से पूरे ऑल ओवर इंडिया में 95% एरिया में बादल छाए हुए हैं, फरीदाबाद को छोड़ के। चलिए जोक सपाट, एक्चुअली में क्या है, बे ऑफ बंगाल में बार बार प्रेशर बन रहा है और उसकी वजह से वहाँ से जितने भी बादल हैं वो अरब सागर की तरफ जा रहे हैं, और ये नमी से हमारे दिल्ली एनसीआर को छोड़ के पूरे ऑल ओवर इंडिया में बादल बन रहे हैं। मैं दिल्ली एनसीआर को छोड़ के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि कहीं ना कहीं हमारे घर के आसपास तो बादल दिखते नहीं हैं, सुबह होते हैं नहीं होते, शाम को होते हैं नहीं होते, तो प्लीज़ इसके बारे में सोचिए आप लोग कि कहाँ गलती कर रहे हैं हम लोग। खैर, वापस बात करें इस चीज़ की, तो IMD ने बोला है कि देखो कुछ हिस्सों में 21% से कम बारिश दर्ज की गई है, मतलब जैसे 100% बारिश होती है ना तो 21% कम कर दो, 79% बारिश दर्ज हुई है जिसमें दिल्ली एनसीआर भी आता है। और अगर यूं ही हाल चलता रहा तो इस बार मानसून खत्म होते होते ऐसा ही रहेगा कि बारिश कम होगी, और बारिश कम होगी तो दो तीन चीज़ें हो जाती है, जैसे कि दिवाली के आसपास फिर उसके बाद पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। खैर, बारिश के बाद पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, कैसे बताया आपको, बारिश की जो बूंदें आती है ना वो सारे का सारे पोल्यूशन लेके ज़मीन पर बैठ जाती है, और फिर उसके बाद आसमान की हवा साफ हो जाती है। तो इसलिए प्रे कीजिए सारे मिलके एक साथ कि बारिश आ जाए तो मज़ा ही आ जाए। खैर, अभी मौसम विभाग का कहना है कि 6 बजे के आसपास बारिश आ जाएगी, 6 बजने ही वाले कुछ ही देर में, तो मैं भी जरा बाहर जाके देखूंगा कि बारिश आई या फिर नहीं आई। और अभी फिलहाल आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।
3: The Masters.

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

पास भी लगातार कॉल्स आती हैं। किसकी? कि सर आप एक काम कीजिए, हमारे एक बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। क्या आपके पास भी कॉल्स आती है कि सर मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, आपके लिए ये लोन आया है? और क्या आपके पास भी कॉल्स आती है कि प्रॉपर्टी बिक रही है, इधर आप लेना चाहेंगे? और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि कॉल्स आती है, बोलते हैं सर ब्लड टेस्ट बुक कराना चाहेंगे, और हम लोग इन कॉल्स को ब्लॉक कर करके परेशान हो चुके हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एक्चुअली मैं हम सबके पास ये फ़ोन्स आते हैं और हम लोग अक्सर यही करते हैं कि हम लोग इनको ब्लॉक कर देते हैं। तो देखो, आपको ये ब्लॉक नहीं करना है, आपको बस एक सिंपल सी ऐप डाउनलोड करनी है, ट्राई डी एन डी। ट्राई मीन्स TRY नहीं, TRAI की एक ऐप है DND। इसको आप डाउनलोड कीजिए और जितनी भी कॉल्स आती है वो सब रिपोर्ट कीजिए इधर, क्योंकि ब्लॉक करने से कुछ भी नहीं होगा। रिपोर्ट जब आप करोगे तो फिर उसके बाद इनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी और आपके पास फिर उसके बाद कॉल्स नहीं आएंगी। काफ़ी बार ऐसा होता है हम थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे ट्रूकॉलर है, तो ट्रूकॉलर हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें हमें पता लग जाता है कि हाँ ये स्पैम कॉल है, ये बार बार हमें कॉल करेंगे। तो उनके कॉल्स आपको नहीं उठाने, तो आप ब्लॉक करोगे तो ऐसा कुछ होएगा नहीं, वो दूसरी कंपनी के पास चले जाएगा नंबर, दूसरी कंपनी आपको परेशान करना शुरू कर देगी। तो अल्टीमेटली एक ही तरीका है कि आप अपना नंबर, मतलब सिंपल से सबसे पहले सेफ रखिए, और दूसरी चीज़ TRAI की DND आप डाउनलोड कीजिए, ताकि ये स्पैमर्स और स्कैमर्स दोनों से आप लोग बच के रहें। देखो, स्पैम वाले वो होते हैं जो लगातार कॉल करके परेशान करते हैं, स्कैमर्स वो होते हैं जो आपके साथ कोई भी स्कैम कर सकते हैं। तो सोचिए इसके बारे में, और अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए। और हाँ, एक और बात, अपने किसी दोस्त का नंबर मत डाल देना उधर, क्योंकि देखो कार्रवाई तो होगी, उसका हो सकता है नंबर भी बंद हो जाए। तो चलिए, अभी फिलहाल जोक्स अपार्ट, हम लोग गाने सुनते हैं और वापस आकर बात करते हैं SIR के फॉर्म्स के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अभी भी हैं जिन्होंने अभी तक SIR के फॉर्म जमा नहीं करवाए हैं। अगर आप भी उनमें से हैं एक, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी SIR के फॉर्म्स जमा करा दीजिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर इस गाने को एंजॉय कीजिए। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: बकवास है।
1: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
2: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ छक्के।
4: जिन मनुष्यों को तालू से बचा रहा है तालू में तालू से कहीं अधिक पापी हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब उनके पाप धरती के सबसे बड़े तालू को जन्म देंगे जिसके जागते ही संपूर्ण मानव जाति हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी।
5: मैं धूम्रपान का आदि हूँ, भोले को भांग चढ़ाता हूँ।

0: जो चाहे वो कर सकता हूँ, सब छोड़ के सारे बुरे कर्म लो मानवता पर चलता हूँ। क्यों इंतजार करे हम सब श्री कृष्ण के अवतार का, सब मिलकर हम निर्माण करें नव सतयुग से समाज का, जहाँ पशु को पूजा जाता हो और मांस कोई ना खाता हो, हर मानव में मानवता हो ना मानवता दिखावा हो।
1: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
2: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अभी भी घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 की गणना अवधि 24 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है।
0: अच्छा, हमें क्या करना है?
1: अगर आपने अभी तक गणना प्रपत्र भर कर DLO को वापस जमा नहीं किया है तो अपना गणना फॉर्म सही जानकारी के साथ DLO को दे या ECI नेट ऐप के माध्यम से जमा करें ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।
0: उसके बाद
1: 31 जुलाई को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके बाद 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
2: मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.eci.gov.in पर जाएं।
1: जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।
3: तो आप लोगों ने सुना ये बात, तो मैं यही बात कब से बोलना चाहता हूँ सभी फरीदाबाद वासियों को कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ अपना SIR का फॉर्म जल्दी से जमा करवा दीजिए। और देखिए, अभी अगस्त में आते ही आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी और लिस्ट में जिसका नाम कट चुका है या फिर किसी का नाम गलत डला है या फिर किसी का नाम गलती से कट गया है तो आप लोग उसके ऊपर आवाज़ उठा सकते हैं, आप लोग बोल सकते हैं, तो आपकी ये चीज़ चेंज कर दी जाएगी और फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट अक्टूबर में सबके सामने पेश कर दी जाएगी। मगर ये लास्ट डेट है 24 तारीख यानी कि परसों, तो आप लोग जमा प्लीज़ करवा दीजिए और फिर उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा और फिर उसके बाद आपको पता है ना कितना टाइम लगता है जब एक फिर से आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाना होता है। तो सभी फरीदाबाद के लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने करवा दिया है तो वेल एंड गुड, सुनिश्चित करें कि आपके आसपास रहने वाले लोगों ने भी करवाया है या फिर नहीं करवाया, मतलब SIR का फॉर्म सबमिट करवाया है या फिर नहीं करवाया। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बज रहे हैं, उन्हीं में से एक गाना चला रहा हूँ तलविंदर की आवाज़ में। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। ख्याल इस गाने का नाम है मैं तेरा होया संभाल। अच्छा, मेरी आवाज़ में अच्छा नहीं लगेगा, सुनिए इसको ओरिजिनल आवाज़ में।
4: मैं तेरा

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: ईशान,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ। जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आज सुन,

0: भाई।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी की 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
3: Yo boys, I am singing song. Soup song.

क्या आपके दोस्त भी घूमने जाने का प्लानिंग कर रहे हैं? क्या आपको भी बार बार बोल रहे हैं चल यार पहाड़ों पर चलते हैं घूमने के लिए? तो थोड़ा सा रुक जाइए, संभल जाइए और उनको बोलिए कि अभी तो रुक जाओ बाबू, क्योंकि हो सकता है पहाड़ खुद ही घूमने आ जाए नीचे। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और अभी रिसेंटली वीडियोज आ रहे हैं

लैंडस्लाइड्स के, और लैंडस्लाइड हो रही है हिमाचल में, हो रही है उत्तराखंड में, और आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया गया है, मतलब हिमाचल में और साथ ही साथ उत्तराखंड में भी। और आपको पता है क्या, अभी एक कार्तिक स्वामी टेम्पल है जो कि हिमाचल में पड़ता है, वहाँ पर 200 श्रद्धालु फंस गए थे क्योंकि वहाँ से वापस आ रहे थे, और वो कम से कम 9 घंटे तक फंसे थे क्योंकि दानोल के पास लैंडस्लाइड हो गई थी और उनका पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया था। तो जितने भी लोग मेरे प्यारे दोस्त फरीदाबाद वासी घूमने के लिए जाने की सोच रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश रेड अलर्ट पर है, रेनफॉल बढ़ रही है और रेनफॉल बढ़ते ही लैंडस्लाइड्स भी बढ़ रही है, स्कूल्स का ऑफ कर दिया गया है। और वहीं पर अगर बात करें कश्मीर की, तो कश्मीर में भी सेम हालात है, उत्तराखंड में भी अभी हालात ऐसे शुरू हो गए हैं। अभी वैसे बहुत दिनों के बाद चारधाम यात्रा फिर से शुरू हुई थी, बट उसी के साथ साथ मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि उत्तराखंड में फिर से बारिश शुरू हो चुकी है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ रहा है दोबारा। तो सिंपल सी एक रिक्वेस्ट है, देखो अगस्त आ रहा है, अगस्त में आप लोगों के पास छुट्टी होगी बहुत सारी, रक्षाबंधन है छुट्टी हो जाएगी, जन्माष्टमी है छुट्टी हो जाएगी, 15 अगस्त की तारीख है उस दिन छुट्टी होगी, तो छुट्टियों का अंबार लगेगा आपके पास अब आने वाले दिनों में, तो उन छुट्टियों में आप लोग घूमने निकल सकते हैं। और कैसे कैसे कहां कहां घूमने जा सकते हैं सबके बारे में कर लेंगे बात, बट अभी कुछ दिनों के लिए अपने पहाड़ों पर जाने के प्लान्स कैंसिल कर दीजिए। आप लोग घूमने कहीं और जा सकते हैं, आप लोग जैसलमेर जा सकते हैं, आप लोग जोधपुर जा सकते हैं राजस्थान में अगर घूमने जाना है, आप दिल्ली जा सकते हैं घूमने जाना है, तो आपको तो बताइए दिल्ली में क्या हो रहा है। तो चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी 89.6 FM सुनते रहिए, आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ, सुनिए इस गाने को, मैं हूँ द मोस्ट वॉन्टेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

क्या आपको पता है फ्लाइंग बसेस आने वाली है? नहीं नहीं सच में, पहले फ्लाइंग टैक्सी की बात कर रहे थे जो कि शायद दुबई में जल्दी ही लॉन्च भी हो जाएगी। वो फ्लाइंग टैक्सी इंडिया में भी आने वाली थी, मगर फिर उसके बाद बोला गया कि फ्लाइंग टैक्सी को रख देते साइड में, फ्लाइंग बस लेकर आएंगे। फ्लाइंग बस मीन्स हाँ, छोटा वाला विमान। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। हमारे परिवहन मंत्री ने ये बयान दिया है कि मैं जल्द ही फ्लाइंग बसेस इंट्रोड्यूस करूंगा इंडियन मार्केट में। और देखो मैं तुझे लगता है फ्लाइंग बस वो वाली बस नहीं होगी जो DTC वाली चलती है। आप सोच रहे हो ये जो फरीदाबाद में बसेस चलती है ये एकदम से आपके सामने चलते चलते उड़ जाएगी? नहीं नहीं ऐसा नहीं होने वाला। इनके बिल्कुल एक स्टेशन होंगे छोटे छोटे, हो सकता है कि दिल्ली हवाई अड्डे से उड़ान भरे और फिर नोएडा हवाई अड्डे पर जाके उतरे, क्योंकि फरीदाबाद में तो कोई हवाई अड्डा है नहीं ना। हाँ एयरफोर्स स्टेशन है बट वहाँ से कोई फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं करती है। तो एक्चुअली में फ्लाइंग बसेस का मतलब है छोटे वाले प्लेन और छोटे वाले जहाज जिसके अंदर मिनिमम 50 लोग आ जाएंगे शायद, या फिर हो सकता है उससे ज़्यादा आ जाए। बट हाँ ये पूरी पूरी गवर्नमेंट रहने वाली है। और देखते हैं अभी सबसे पहले इसका स्टार्ट कहाँ पर होगा। और वो कह रहे हैं कि फ्लाइंग बसेस लेकर आएंगे, पहले जो ज़मीन पर चल रही है वो तो चल लें, क्योंकि काफ़ी बार आप लोगों ने देखा होगा बसेस रुक जाती है, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं। खैर उन सब चीज़ों को साइड में रखते हैं, जोक्स अपार्ट बात करते हैं फ्लाइंग बसेस की। तो एक्चुअली में ये फ्लाइंग बस जो है ना, ये आज तक किसी देश में लागू नहीं हुई है। और इसके साथ साथ फ्लाइंग टैक्सी जो है उसका कंसेप्ट कहा जा रहा है कि 2027 में एक्टिवली दुबई में चालू हो जाएगा। और इंडिया में भी कुछ स्टार्टअप्स हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं, उनका भी ये दावा है कि साल 2027 तक वो बेंगलुरु और मुंबई और पुणे और दिल्ली में ये फ्लाइंग टैक्सी शुरू कर देंगे। ये स्टार्टअप्स का दावा है, मेरा दावा नहीं है ना कि सरकार का दावा है, स्टार्टअप्स का दावा है। तो देखते हैं क्या ये सफल हो पाएगा या फिर नहीं। तो चलिए ये तो वक्त बताएगा, और अभी वक्त हो चुका है गाने का। आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर एक गाना चला रहा हूँ आत्मरामा, इस गाने का नाम ब्रदर वी की आवाज में। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा।

महादेव मैं हूँ बैरागी भोले तेरी वजह से हूँ मैं प्रेमी हूँ मैं पापी हूँ मैं माल पी के मजे में हूँ मैं नशे में हूँ इतना ज्यादा कि बुरे कर्म भी ठीक लगे धन दौलत मैंने जो भी कमाया।

एक शरीर है दो मनुष्य लगता मेरे भीतर रहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि सब कुंडली देख के कहते हैं, एक तो है सीधा बड़ा और दूसरा बहुत ही पापी है, मेरी हरकतों से बस पता चले कब कौन समझ

में ज्ञान संसार गना पर बुद्धि को एकांत करा। मैं पढ़ता गया मैंने बुद्धि में ब्रह्मांड भरा। मैं शून्य बना, मैं शांत बना, डी वॉइस मैं देवांश बना। मैं लिखता गया अब कोई लगा।

ज्ञान संसार गना पर बुद्धि को एकांत करा। मैं पढ़ता गया मैंने बुद्धि में ब्रह्मांड भरा। मैं शून्य बना, मैं शांत बना, डिवोइस मैं देवांश बना। मैं लिखता गया अब कोई लगाम विचार पे ना।

आपको तो मालूम ही है ना कि मैं अक्सर कचरे की बात करता हूँ, मतलब वो बॉलर नहीं कचरा जो लगान मूवी में आया था, वो वाला नहीं, कचरा मींस कचरा जो हम लोग फैलाते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। एक्चुअली में हम लोग ना कचरा इतना ज़्यादा फैला देते हैं कि मदर नेचर को दे देते हैं, और इस बार मदर नेचर ने बोल दिया लो अपना वापस पकड़ो कचरा। ये हुआ है मुंबई में, मुंबई में जितने भी बीच है ना, खासकर जुहू चौपाटी, वहाँ पर ये देखने को मिला है कि जितना भी ह्यूमन वेस्ट था जो लोगों ने फेंका था उठा उठा के पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, वो सारा का सारा कचरा अब वापस आ चुका है जुहू बीच पे। और ये किसी स्लम एरिया से ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा, स्लम एरिया जैसा ही लग रहा है। एक्चुअली में ये पता नहीं कितना लाख टन का कचरा वापस समुद्र ने ज़मीन पर फेंका है, एंड आई गेस दिस इज़ हाउ नेचर रिएक्ट्स। तो हम सबको अभी से सतर्क हो जाना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे हो कि हमारे यहाँ तो कोई बीच नहीं है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बट हम भी तो करते हैं ना, नालियों में कूड़ा फेंक देते हैं, हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी के कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ऐसे ही फेंक देते हैं। जब लोगों ने छबील लगाई थी तो फिर उस टाइम काफ़ी सारे लोगों ने प्लास्टिक के ग्लासेस यूं ही इधर उधर फेंक दिए थे। मोस्ट ऑफ द लोगों ने वैसे उठाए थे उन्हें वापस, बट काफ़ी सारे लोगों ने यूं ही फेंक दिए थे। और हम लोग ये भी देखते हैं काफ़ी बार जो भंडारा होता है या फिर किसी को खाना खिलाया जाता है तो प्लास्टिक की प्लेट सड़क पर ही पड़ी रहती है। तो ये सब आफ्टर ऑल जाके कूड़ा एक साथ ही इकट्ठा होता है और वो काफी बार ड्रेनेज में भी फंस जाता है। तो जरा सोचिए इस बारे में, और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए एक प्यारा सा गाना हर्ष लिखारी की आवाज में, बेबे बापू, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा सुन।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक UI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

सो व्हाट डू यू गाइस थिंक, लाइक कितनी छुट्टियां पड़ने वाली है हमारी अगस्त में? बहुत सारी छुट्टियां पड़ने वाली है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। लॉन्ग वीकेंड का इंतजार कर रहे हो तो रुक जाओ मेरे दोस्त, लॉन्ग वीकेंड शायद नहीं आएगा अगस्त में। एक्चुअली मैं अगस्त में इंडिपेंडेंस डे वाला जो महीना है ना, हफ्ता है, सॉरी माफ कीजिए, 15 तारीख को सैटरडे को इंडिपेंडेंस डे है, नेशनल हॉलीडे होता है, आप सबकी भी छुट्टी हो सकती है उस दिन हो, और छुट्टी रहेगी तो अच्छी बात है, आप लोग भी सैटरडे और संडे को एंजॉय कर पाओगे। और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ 26 तारीख को, 26 अगस्त को ईद है, तो ईद पर भी काफ़ी सारे लोगों की छुट्टी होती है, और जिनकी छुट्टी नहीं होगी इन सब दिनों में वो सबका मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि देखो कब कब छुट्टी आपको मिल सकती है और कब कब आप लोग घूमने का प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं 26 अगस्त की, फिर से वहाँ पर ओनम भी है, वो तो रीजनल हॉलीडे रहती है, वैसे केरला में ज़्यादातर हॉलीडे रहती है, अब दिल्ली NCR में आपको इस चीज़ की छुट्टी नहीं मिलेगी, बट हाँ फ्राइडे अगस्त 28 इस दिन है रक्षाबंधन, और इस दिन आपको छुट्टी ज़रूर मिलेगी, और जन्माष्टमी भी तो आती है तो जन्माष्टमी की भी छुट्टी मिलेगी आपको। बट एक ट्विस्ट है यहाँ पर, ट्विस्ट ये है कि इस बार जन्माष्टमी की छुट्टी अगस्त में नहीं मिलने वाली, जन्माष्टमी की छुट्टी है सितंबर में, 4 सितंबर फ्राइडे को, मतलब फिर से फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है। अगस्त में भी आपको 28, 29, 30 छुट्टी मिल जाएगी, और अगले महीने मतलब सितंबर में भी आपको 4, 5, 6 को छुट्टी मिल जाएगी। तो इसी के साथ साथ अभी फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, कहीं नहीं जा रहा हूँ, बस बाहर जा रहा हूँ, बाहर जाके मौसम देख कर आता हूँ और आप सभी के लिए गाना चलाता हूँ। गाना है जो बैकग्राउंड में बज रहा है ना, वही चलाऊंगा, मैं मस्ती में झूमूं, हाँ भूला मैं जहाँ, सुनिए इस गाने को, हंसती रहे तू है, गाने का नाम पैराडॉक्स की आवाज में आप सभी के लिए, रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी की 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: Thank you.

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

और ट्रिप का नाम था पूरा K2K, मींस प्रोजेक्ट K2K। K2 मींस कार्तिक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था ना। तो बता दूं आपको, 4200 किलोमीटर का ये रन था और इसने बहुत सही टाइम पर कंप्लीट कर लिया। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर फिर से। और मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग ना अपनी रनिंग जर्नी शुरू नहीं कर रहे, अपनी फिटनेस जर्नी शुरू नहीं कर रहे, तो इस चीज़ को सुनने के बाद शायद आपके अंदर कोई जोश आ जाए और आप लोग भी अपनी फिटनेस जर्नी को शुरू कर दें। तो बता दूं, इस लड़के ने कारगिल से शुरू किया था, कश्मीर में टू बी एग्जैक्ट, कारगिल से इसने शुरू किया था। कन्याकुमारी ये पहुंचा अभी रिसेंटली 14 या 15 जुलाई को, और 55 दिन का समय इसको लगा कश्मीर से कन्याकुमारी रनिंग करते हुए पहुंचने का। मतलब सिर्फ 2 महीने के अंदर, 2 महीने से भी कम टाइम में ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंच गया। सोचिए कितना एंड्योरेंस चाहिए, कितना स्टेमिना चाहिए, और दो एक दिन में कितने किलोमीटर ये रनिंग कर रहा होगा, सोचिए इसके बारे में। ऐसा है, एक ही दिन ज़्यादा रनिंग भी हुई, किसी किसी दिन कम रनिंग भी हुई, और एक दिन इंजरी की वजह से शायद रनिंग नहीं भी कर पाए थे क्योंकि इनके पैर पर वो एक टेप आती है, डॉक्टर्स टेप कहते हैं उसे। मतलब एग्जैक्ट टेप क्या होता है वो मुझे नहीं पता, और वो फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं, तो वो टेप इनके पैर पे लगी हुई दिखाई दी थी। बट इन्होंने रनिंग नहीं छोड़ी और इन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा। तो ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है हम सभी लोगों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो अपनी एक फिटनेस जर्नी शुरू करना चाहते हैं बट उनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा। तो अब कब मिलेगा मोटिवेशन? जस्ट उठो और जिम जाओ, या फिर पार्क में जाओ और रनिंग करना शुरू करो। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए ये खाना ला रे बाय मनिंदर बट्टर, ओनली ऑन 89.6 FM।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप सुनो तो।
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
2: हाँ,
0: पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय बाय।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: क्या आपको मालूम है कल से फिर से मैच शुरू होने जा रहे हैं? किसके? इंडिया के। और इंडिया का T20 का मैच है, 3 मैचों की सीरीज होने जा रही है। श्रेयस अय्यर कप्तानी करने वाले हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि टीम इंडिया अब बस नाक न कटवाए, बस चल जाएगा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। सबसे पहले हुआ इंडिया वर्सेस आयरलैंड T20, फिर उसके बाद हुआ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20, और सिर्फ आप सभी को पता है कितने मैच जीते? एक भी मैच नहीं जीत पाए। पहला मैच ड्रॉ हो गया था, ड्रॉ क्यों, बारिश की वजह से इंग्लैंड के साथ। और फिर उसके बाद लगातार 4 मैच टीम इंडिया हारी। और अगर मैं अभी बात करूं, इंडिया का मैच शुरू होने वाला है जिम्बाब्वे के साथ T20, कल से ही मैच शुरू हो रहा है, दोपहर 4:30-5 बजे के आसपास ये मैच शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट। और इस बार टीम इंडिया की कप्तानी फिर से कर रहे हैं श्रेयस अय्यर। और वहीं पर अगर मैं बात करूं, टीम इंडिया में कुछ बदलाव हुआ है, व्हाट डू यू थिंक? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक बॉलर है, उनको लाना चाहिए था, और उनका नाम है जसप्रीत बुमराह। क्योंकि इस लड़के ने बॉलिंग में भी कमाल दिखाया था पहले भी, और बैटिंग में भी कमाल के दिखाया था सेकंड ओडीआई में भी, बट स्टिल इनको चांस नहीं दिया गया T20 में। तो मुझे लगता है कि देना चाहिए ना एक चांस। और यहाँ पर फिर से आपको बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे सूर्यांश शेडगे एंड साथ ही साथ वैभव सूर्यवंशी। तो चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए खूब सारे गाने तो बज ही रहे हैं, मगर उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को मुझसे बातें करनी है तो जी नंबर है मेरा 9654896896। कहीं वाटर लॉगिंग से परेशान है तो वो भी बताइएगा। अभी फिलहाल आप सभी के लिए एक गाना चला रहा हूँ जो कि वीकेंड वाली वाइब जरूर दे देगा। वैसे मौसम को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये गाना चलाया है। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर।
1: थोड़ी विस्की, थोड़ी आइस, थोड़ी मुझ में बैड वाइब्स, थोड़ी बातें तेरी टॉक्सिक सी, थोड़ी थोड़ी सैड लाइफ, ये थोड़ी विस्की।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी की 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: My like it, Asha.

0: पंजाबी पॉप कल्चर।
1: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
2: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
3: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

कल भी मैंने एक बात की थी और वो थी वाटर लॉगिंग की। और पता आपको, आज सुबह सुबह बारिश हुई, बट हाँ, ओल्ड फरीदाबाद के अंडरपास या फिर ग्रीन फील्ड के अंडरपास या फिर नेवला महाराजपुर के अंडरपास, तीनों में कहीं पर भी जल भराव नहीं हुआ। कॉन्ग्रेचुलेशंस। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। रात को बारिश हुई थी, सबको मालूम है, रात को बहुत अच्छे से बादल बरसे थे, बट कहीं ना कहीं दिक्कत ये थी कि कहीं ना कहीं जाम लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जाम मिला बट उतना नहीं मिला जितना एक्सपेक्टेड था। तो बता दूं आपको, आने वाले कुछ दिन बारिश वाले रहने वाले हैं, खासकर फ्राइडे। तो कल बारिश नहीं है एक्सपेक्टेड, बट फ्राइडे को बारिश एक्सपेक्टेड है। तो उसके लिए बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए। आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे और मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। मैं मिलूंगा आप सभी से कल शाम फिर से 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और वापस आएगी गीत विदेश की बाजियां। और हाँ, भूलना मत कि कल मैच है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे का। और हाँ, अगर आपको कोई भी फोन कॉल पर तंग कर रहा है, बार बार कॉल कर करके स्पैम कर रहा, स्कैम कर रहा, कुछ भी कर रहा है, रिपोर्ट कर दो उसको। कैसे? TRAI की DND ऐप को डाउनलोड करके। और इसी के साथ साथ बाय बाय, टेक केयर, वापस आएगी गीत विदेश बाजियां। प्यार भरी बातें, प्यार भरे नगमे, प्यार भरी गाने, सब कुछ प्यार भरे ही होते हैं उसके। तो चलिए, आप लोगों को कुछ ही दिन में एक नया सरप्राइज मिलने वाला है। क्या होगा वो सरप्राइज, बताएंगे इसके बारे में। फिलहाल दिस इज RJ गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके हम तो

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: अरे भाई साहब, ये BLO अभी भी घर घर क्यों आ रहे हैं?
5: क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 की गणना अवधि 24 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है।
4: अच्छा, हमें क्या करना है?
5: अगर आपने अभी तक गणना प्रपत्र भरकर BLO को वापस जमा नहीं किया है तो अपना गणना फॉर्म सही जानकारी के साथ BLO को दें या ECI नेट ऐप के माध्यम से जमा करें ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।
4: उसके बाद
5: 31 जुलाई को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके बाद 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
6: मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.eci.gov.in पर जाएं।
5: जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।

कितनी अजीब चीज है ना ये इश्क। कभी यही इश्क दुनिया की हमें सबसे खूबसूरत जगह पर ले जाता है और कभी यही इश्क हमें हमारी तन्हाइयों से मिलवा देता है। इश्क में सब कुछ बहुत गहरा हो जाता है, खुशी भी है, याद भी है और इंतजार भी है। हेलो हाय, आप सुन रहे हैं शो इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। रात हो चुकी है और घड़ी में 8 बज चुके हैं। दिन की भागदौड़ अब धीरे धीरे थम रही है, सड़कें थोड़ी शांत हो रही हैं और दिल अब अपने असली ख्यालों की तरफ लौटने लगा है। क्योंकि रात का समय ऐसा ही होता है, दिन में हम जितना भी खुद को बिजी रख लें, रात को कुछ यादें, कुछ चेहरे, कुछ बातें खामोशी से हमारे पास आकर खड़े हो जाते हैं। और शायद यही वजह है रात का ये समय इश्क को समझने के लिए सबसे सही होता है। तो चलिए इसी रात, इसी खामोशी और इन्हीं एहसासों के साथ शुरू करते हैं इश्क बाजियां का पहला सेगमेंट, इश्क शायराना, जहां हम बात करते हैं उन शायरों की जिन्होंने मोहब्बत को सिर्फ महसूस नहीं किया बल्कि उसे शब्दों में ऐसे ढाला कि उनकी शायरी आज भी दिल तक सीधा पहुंच जाती है। और आज इश्क शायराना में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शायरा की जिनकी शायरी में मोहब्बत की नरमी भी है और जुदाई की चुप्पी भी। मैं बात कर रही हूँ परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो इश्क को किसी कहानी की तरह नहीं लिखती, वो इश्क को जिंदगी की तरह लिखती है। जहाँ सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होता, जहाँ लोग हमेशा साथ नहीं रहते, जहाँ कभी कभी मोहब्बत बस एक याद बनकर रह जाती है। उनकी गजल है जिसकी शुरुआत ही इतनी सच्ची है कि सुनने को लगता है जैसे किसी ने दिल की बात कह दी हो। वो लिखती है, अब भला छोड़ के घर क्या करते, शाम के वक्त सफर क्या करते। सोचिए जब दिल किसी के पास रह जाए तो इंसान कहीं और जाकर भी क्या करेगा। रास्ते चाहे कितने भी खुले क्यों ना हो, सफर तभी खूबसूरत लगता है जब कोई साथ चलने वाला हो। और अगर वही इंसान हमारे साथ ना हो तो फिर सच में शाम के वक्त सफर करने का मतलब क्या रह जाता है। और आगे लिखती है, तेरी मसरूफियतें जानते थे, अपने आने की खबर क्या करते। कितना गहरा एहसास है इसमें। कभी कभी हम किसी की जिंदगी में इतने धीरे धीरे शामिल हो जाते हैं कि हमें लगता है शायद हमारी मौजूदगी भी मायने रखती है, लेकिन फिर वही एहसास होता है कि सामने वाला इंसान हमारी नहीं अपनी ही दुनिया में मसरूफ है। और तब दिल चुपचाप अपने कदम पीछे खींच लेता है, ना कोई शिकायत है ना कोई सवाल है, बस एक खामोशी। और शायद इसी खामोशी को परवीन शाकिर ने अपने एक और शेर में बहुत ही खूबसूरती से कहा है। वो मुसाफिर ही खुली धूप का था, साए फैला के शजर क्या करते। मतलब अगर कोई इंसान रुकने के लिए बना ही नहीं है, अगर वो एक मुसाफिर था तो फिर हम अपनी मोहब्बत की छांव फैलाकर भी उसे रोक कैसे लेते। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग बस मुसाफिर होते हैं, वो आते हैं हमारी दुनिया में, कुछ यादें छोड़ जाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, और हम काफी देर तक उन्हीं रास्तों को देखते रहते हैं जहां से वो गुजरा था। परवीन शाकिर की शायरी की खूबसूरती यही है, वो मोहब्बत को सिर्फ पाने की बात नहीं करती, वो मोहब्बत के बाद बच जाने वाली खामोशी की भी बात करती हैं। और शायद इसीलिए उनकी शायरी सुनते हुए हर इंसान को कहीं ना कहीं अपनी कहानी नजर आ ही जाती है। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। एक गाना सुनते हैं और वापस लौटेंगे इसी इश्क शायराना के सफर में परवीन शाकिर की कुछ और बातों के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

और ये था बहुत ही खूबसूरत गाना। रात की खामोशी में कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बस सुनाई नहीं देते बल्कि महसूस होते हैं। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं हूं आपके साथ इश्क वाली गीत। और जैसे जैसे रात गहरी होती जा रही है वैसे दिल भी थोड़ा थोड़ा और सच्चा होता जा रहा है। दिन में हम बहुत सारी बातें छुपा लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, खुद को बिजी रख लेते हैं, लेकिन रात को अक्सर वो ख्याल वापस आ जाते हैं जिनसे हम दिन भर बचते रहते हैं। और शायद यही वजह है कि इश्क को समझने के लिए ये समय बहुत खूबसूरत है। इसलिए इश्क बाजियां के पहले सेगमेंट इश्क शायराना में मैं बात कर रही हूँ परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की अगली नज्म पर बढ़ते हैं जहाँ वो मोहब्बत को किसी बड़े दावे के साथ नहीं लिखती हैं। वो मोहब्बत को छोटी छोटी यादों, छोटी छोटी मुलाकातों और दिल की हल्की सी कसक में ढूंढती हैं। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत गजल है जिसका पहला ही शेर है, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। कितनी सच्ची बात है, कभी कभी जिंदगी में खुशी और उदासी एक साथ होती है। आप मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी कमी रह जाती है, क्योंकि कुछ लोग हमारी खुशी का हिस्सा बन जाते हैं और जब वो साथ नहीं होते तो खुशी भी थोड़ी अधूरी सी लगती है। और वो आगे लिखती है, मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल भी। ये शेर सुनकर लगता है जैसे किसी ने दिल की थकान लिख दी हो। जब हम किसी को बहुत चाह लेते हैं और वो हमें नहीं मिलता तो एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान दुआ करना भी छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद किस्मत में अब वो नाम नहीं है। लेकिन परवीन शाकिर की शायरी की यही खूबसूरती है, वो मोहब्बत को शिकायत नहीं बनने देती, वो उसे एक याद बना देती है। ऐसी याद जिसमें कभी चांद की रोशनी होती है, कभी ठंडी हवा और कभी दिल की हल्की सी कसक। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

इसी खूबसूरत गाने के साथ फिर से स्वागत है। कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बस कानों तक नहीं रुकते, सीधा दिल तक उतर जाते हैं। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। हम बात कर रहे हैं परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी में सिर्फ इश्क मिल जाने की खुशी नहीं है, उसमें बिछड़ जाने की सच्चाई भी है और याद बनकर रह जाने का दर्द भी है। तो उनका एक और शेर मैं आपको सुनाती हूँ। वो लिखती है, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा। कितनी खूबसूरत बात है इसमें। कुछ लोग सच में खुशबू की तरह होते हैं, वो हमारी जिंदगी में आते हैं और फिर हवाओं में बिखर जाते हैं। लेकिन जो इंसान उनसे मोहब्बत कर बैठता है, उसके लिए सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ गया, सवाल ये होता है कि अब वो खुद किधर जाए। वो आगे लिखती है, हम तो समझे थे कि एक जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी रगे जां में उतर जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि दिल पर लगा दर्द बस थोड़ा सा वक्त मांगता है, थोड़े दिन गुजरेंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिल पर नहीं लगते बल्कि हमारी रूह में उतर जाते हैं, और फिर इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उनकी याद कहीं ना कहीं हमारे साथ चलती रहती है। और फिर वो आगे लिखती है, वो जब आएगा तो फिर उसकी रिफाकत के लिए मौसम गुल मेरे आंगन में ठहर जाएगा। यानी दिल कहीं ना कहीं अब भी उम्मीद लगाए बैठा है कि अगर वो इंसान कभी लौट आया तो जिंदगी फिर से खूबसूरत हो जाएगी। कभी कभी इश्क यादों से ज्यादा उम्मीदों पर जिंदा रहता है, और शायद इसीलिए इंसान पूरी तरह अपने पसंदीदा इंसान को भूल नहीं पाता है। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। हम गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है इश्क शायराना। हम बात कर रहे हैं परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी की सबसे खूबसूरत बात ये ही है कि वो मोहब्बत को सिर्फ शुरुआत से नहीं देखती, वो उसके बाद की खामोशी भी लिखती है। कभी जिंदगी में एक ऐसा मौसम आता है जब सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे अचानक जिंदगी में बहुत गुलाब खिल गए हों, लेकिन वही मौसम जब गुजर जाता है तो उसकी याद भी धीरे धीरे दर्द बन जाती है। तो एक शेर है, सुनाती हूँ। गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। यानी जो पल कभी बहुत खूबसूरत थे वही याद बनकर कभी कभी दिल को तकलीफ देते हैं, क्योंकि सच ये है कि इंसान यादों से भाग नहीं सकता, वो चाहकर भी कुछ चेहरों को, कुछ बातों को, कुछ लम्हों को भुला नहीं पाता। और फिर वो लिखती है, राग के ढेर पर अब रात बसर करनी है, जल चुके हैं मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह। ये शेर सुनकर लगता है जैसे किसी ने टूटे हुए सपनों की तस्वीर खींचती हो। हम अपने सपनों के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि जब वो टूटते हैं तो सिर्फ सपना नहीं टूटता, हमारा एक हिस्सा भी टूट जाता है। लेकिन जिंदगी की अजीब बात यही है कि इंसान फिर भी जीता रहता है, वो रात के बीच भी एक नई सुबह ढूंढने की कोशिश करता है। और शायद इसीलिए मोहब्बत चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लोग उससे दूर नहीं भागते, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ खुशी नहीं देती, वो इंसान को थोड़ा और गहरा बना देती है, मैच्योर बना देती है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। यहाँ पर वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: आज की सेफ्टी टिप्स सुन लो, वरना आपकी लाइफ बन जाएगी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी रील। रूल नंबर वन, जियो टैग मत लगाओ, क्योंकि ये इंस्टा है, जोमैटो नहीं। पासवर्ड यूनिक रखो, बर्थडे या लवर का नाम बिल्कुल नहीं, नहीं तो हैक होते ही तुम्हारी एस्थेटिक फीड बन जाएगी कॉमेडी कंटेंट। और हाँ, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो, नहीं तो नेक्स्ट स्टोरी होगी न्यू अकाउंट प्लीज फॉलो बैक। और भाई, स्ट्रेंजर्स को पिक्स मत भेजना, ये कोई shaadi.com का फास्ट ट्रैक थोड़ी ना है। अननोन लिंक्स, उस पे क्लिक करना मतलब वायरस को चाय पर बुलाना। तो इंस्टा यूज करो, मस्त रहो, पर सिक्योरिटी के साथ, वरना वायरल तो हो जाओगे लेकिन ऑरा माइनस हो जाएगा।

यानी कि एक इंसान अगर साथ हो जाए तो ये पूरा जहां साथ हो जाए। इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। परवीन शाकिब की बात हो रही है, उनकी शायरी बहुत खूबसूरत है, ये तो मानना पड़ेगा कि वो इश्क को सिर्फ कहानी नहीं बनाती बल्कि उसे याद बना देती हैं। ऐसी याद जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। कभी कभी हम सोचते हैं कि वक्त गुजरने के साथ सब कुछ पीछे छूट जाता है, लेकिन सच ये है कुछ रिश्ते जिंदगी से नहीं जाते, बस दिल के किसी कोने में चुपचाप रख दिए जाते हैं। तो उनका अगला शेर है, याद तो होंगी वो बातें तुझे अब भी लेकिन शेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। कितनी गहरी बात है इसमें। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम रोज याद नहीं करते, लेकिन हमें पता होता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी भी मौजूद हैं, जैसे अलमारी में रखी कोई पुरानी किताब जिसे हम बार बार नहीं खोलते, लेकिन उसकी मौजूदगी हमें हमेशा पता होती है। और शायद यही वजह है कि मोहब्बत कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वो बस अपनी जगह बदल देती है। पहले वो किसी इंसान में होती है और फिर धीरे धीरे वो यादों में रहने लगती है। तो अगला शेर है, हिजर की शब मेरी तन्हाई पर दस्तक देगी, तेरी खुशबुएं मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। यानी जुदाई की रात जब आएगी तो तेरी याद भी आएगी, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराना ख्वाब अचानक दिल में लौट आया हो। और शायद यही इश्क की सबसे गहरी बात है। इश्क हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता, कभी कभी इश्क बस एक खुशबू बनकर रह जाता है जो वक्त के साथ हल्की तो हो जाती है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होती। और यही खूबसूरत एहसास के साथ आज के इश्क शायरानों को हम यही विराम देते हैं। मैं हूँ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
1: कुछ हटके
3: आप सुन रहे हैं आरजे गीत को इश्क बाजिया में ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ

वैसे इस गाने में आप किशोर दा की आवाज को फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आवाज है ये एआई की आवाज है, किशोर दा की आवाज नहीं है। लेकिन है, जहां एआई के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वहां कुछ फायदे भी हैं कि हम इन नए गानों को उस पुराने एहसास में जी पा रहे हैं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और अब सेगमेंट जो शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहां ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी भले ही पूरी नहीं हुई हो लेकिन उस मोहब्बत ने कमाल किया है। तो चलिए रेट्रो इश्क में आज फिर चलते हैं, उसी मोहब्बत की गहराई को महसूस करते हैं। और ये खूबसूरत सी मोहब्बत है किशोर दा और मधुबाला की, जहां हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, अंदर कहीं एक टूटा हुआ इंसान था। कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बतें बड़ा शोर मचाती हैं और कुछ चुपचाप किसी दिल के कोने में बस जाती हैं। और आज रेट्रो इश्क में उसी मोहब्बत के बारे में बात होगी जिसे हंसी में लपेटा गया मगर आंसू से सींचा गया, किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
1: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
2: क्या कहा?

बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये गाना है किशोर दा और लता जी की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क के इस खास से सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। एक दौर था जब मधुबाला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती थी, मुस्कुराहट उनकी पहचान थी और चेहरे पर एक ऐसा नूर था जैसे पर्दे पर बस चांद उतर आया हो। और दूसरी तरफ थे हमारे किशोर।

बॉलीवुड का सबसे चुलबुला बिंदास और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा आवाज का जादूगर। जब दोनों पहली बार मिले तो एक स्टार और एक स्टैंड अप सिंगर की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात मोहब्बत में कैसे बदल गई? दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे, उनको कैसे प्यार हुआ? इसके बारे में बात होगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: राइटर,
1: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

रफी साहब की आवाज में है ये गाना और फिल्म हम किसी से कम नहीं जो आई थी 1977 में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और हम बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। दो ऐसे नाम जिनका जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करना शायद बेईमानी है। एक एक्टिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार थी तो दूसरा संगीत जगत के बादशाह।

इन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन इनके प्यार की कहानी का जिस तरह से अंत हुआ वो आज भी आपकी आंखें भिगो देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये दोनों कैसे करीब आए, इनको कैसे मोहब्बत हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए वक्त चाहिए, पर कुछ मोहब्बतें पहली नजर में ही दिल पर दस्तक दे देती हैं। मधुबाला जो उस वक्त दिलीप साहब की मोहब्बत में थी और अपना दिल जो है वो भी तोड़ चुकी थी, और तभी किशोरदा उनकी जिंदगी में आते हैं एक हंसी का मरहम बनकर। मधुबाला अपने करियर में पीक पर थीं, जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है और वो विदेश चली गई अपना इलाज कराने के लिए। और इस वक्त ये दोनों साथ में थे, यानी कि किशोरदा और मधुबाला साथ में थे, लेकिन जब किशोरदा को उनका पता चलता है तो उस वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। और जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके साथ जिंदगी का हर लम्हा बिताने की चाह भी रखता है, फिर चाहे उसमें सुख हो या दुख, ये जानते हुए भी कि मधुबाला की जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है। लेकिन किशोरदा ने हमेशा उनका ख्याल रखा और उनसे शादी करने का फैसला लिया, और उन्हें कभी भी इस फैसले को लेकर पछतावा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत में थे और मधुबाला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत रेट्रो इश्क, जो बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है। किशोरदा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं, जहाँ एक ऐसा वक्त आ गया था मधुबाला की जिंदगी में कि किशोरदा ने इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन इससे कुछ समय पहले की बात है, जब इनकी बहुत ही एक सुपरहिट मूवी रही जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। सेट पर मजाक मस्ती और हंसी के बीच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे में घुलने लगी। और जब मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां ये इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। और यहाँ जब किशोरदा की बात आई तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए, और आखिर में उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि किशोरदा की फैमिली मधुबाला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन पता है इन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके रिश्ते पर कभी हावी नहीं हुई। देखो यार, हर कोई ये चाहता है कि जब किसी की जिंदगी का कोई नया चैप्टर शुरू हो तो उनकी फैमिली रहे उनके साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहे उनके साथ। हालांकि कभी कभी किसी को ये खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके परिवार उनसे अलग हो जाते हैं जब वो नए रिश्तों में बन जाते हैं। इनको भी अपनी फैमिलीज को पीछे रखना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था उसी एफर्ट्स के साथ। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं और बहुत ही इमोशनल सी इन दोनों की स्टोरी है। अच्छा, जब किसी की शादी होती है और शादी में बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे जिंदगी भर, चाहे सुख हो या दुख। खैर, आज के टाइम में ये बातें जो हैं वो बहुत ही बेमानी सी लगती हैं। शायद प्यार के मायने बदल गए हैं आजकल, शायद वो पहले वाली शिद्दत नहीं रही है। लेकिन किशोर दा की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने अपनी हर कस्म को निभाया, मधुबाला को सबसे अच्छा इलाज उन्होंने कराया, लेकिन उनकी हालत जो है वो बीतते दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इतना सब चल रहा था इनके साथ, लेकिन किशोर दा की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई। जीवन साथी बनने पर लोग कसम खाते हैं कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, और इस बात को किशोर दा ने करके दिखाया। उन्हें पहले से मधुबाला की सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी की और आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखा। ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि सुख दुख में अपने साथी के साथ खड़े रहने का मतलब क्या होता है। और आई थिंक आप इनके प्यार की कहानी को समझ ही गए होंगे। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हमें मुस्कुराता दिखा, लेकिन अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेल रहा था हमारे किशोर दा। और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी बहुत ही खास सा सेगमेंट लेकर। तब तक आप ये गाना सुनिए।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो।

पल पल दिल के पास। और इसी गाने के साथ स्वागत है फिर से, शो है इश्क बाजियां और दिल दिया गल्ला लेकर हाजिर हूँ। दिल दिया गल्ला में आपके दिलों की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचानी है, और एक बहुत ही खास से टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। इश्क बाजियां शो है, और कई बार लोग रिश्तों में आ जाते हैं, बड़े बड़े रिश्ते बना लेते हैं, काफी सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो पाती है। और लोग कहते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है जो रिश्ता मजबूत नहीं हो पा रहा है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो शायद इस बात के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप अपने रिश्ते को ना गहराई से नहीं समझ पाते हैं। आप समझते हैं सामने वाले को, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आपको समझना चाहिए। और अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि किस तरह से आप अपने रिश्ते को समझ सकते हैं, सामने वाले की रेस्पेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसी बारे में बातें होंगी आज दिल दिया गल्ला में। फिलहाल वक्त है गाने का, शो इश्क बाजियां, और गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
4: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
5: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शान की आवाज में है ये बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक सुनो ना। और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्कबाजियां और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। और जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो आपको रिश्ते और आपकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में बहुत अच्छे से सोच लेना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ऐसे रिश्तों में बन जाते हैं जो उनके लिए आगे चलकर बहुत टॉक्सिक साबित हो जाते हैं। और अक्सर वो लोग घुलते रहते हैं उन्हीं रिश्तों में, ना तो छोड़ पाते हैं उन रिश्तों को और ना ही रह पाते हैं। और कई बातों में लोग पहले ही समझ जाते हैं, लेकिन कई रिश्तों में लोग आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा रिश्ता टूटना लाजमी है। लेकिन क्या करना चाहिए उस टूटते हुए रिश्ते को बचाने के लिए, ऐसे में रिश्ते को गहराई से आपको बहुत जरूरी है जानना। कोई इंसान आपके लायक है या नहीं, आप कुछ बातों पर गौर करके ये पता लगा सकते हैं। तो वो कौन सी बातें होने वाली हैं जिन पर आपको गौर करना है? और सबसे पहली बात पता है क्या है? जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि रिश्ते में भले ही प्यार कम हो जाए, केयर कम हो जाए, लेकिन रिस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए यार। तो इसलिए रिश्ते में ना रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और हर किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। लेकिन आपके मन में अपने पार्टनर और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए अगर सम्मान है, इज्जत है, तो आपका रिश्ता ताउम्र चल सकता है। इसीलिए सबसे पहले ख्याल रखिए कि क्या सामने वाला आपकी इज्जत करता है दिल से। आप तो कर रहे हैं, आप तो पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन क्या सामने वाले की तरफ से भी वो एफर्ट्स है या नहीं है? और अगर है तो आप समझिए उसे, और इस तरह समझकर आप अपने रिश्ते को बेहतरीन साबित कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है गाने का, चलिए सुनते हैं इस गाने को। फिल्म भाग मिल्खा भाग से है गाना, बगैर तेरी किए सुनते हैं इस ट्रैक को।

बातें आहिस्ता हैं और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है पंकज उदास की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना और आहिस्ता कीजिए बातें। सेगमेंट है दिल दियां गल्लां और बातें चल रही हैं कि किसी भी रिश्ते को गहराई से कैसे समझा जाए। कहते हैं कि हर रिश्ते की नींव होती है विश्वास। कोई रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब एक दूसरे पर आपको पूरी तरह से यकीन हो। अपने रिश्ते को हेल्दी बनाने के लिए और गहराई से जानने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत जरूरी है और ये भरोसा ही वो होता है जो एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए आप अपने पार्टनर पर, आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उस पर भरोसा बनाए रखिए। और अगर सामने वाला आप पर भरोसा करता है ना दिल से, तो आप उसके भरोसे को कभी ना तोड़ें, क्योंकि ये ट्रस्ट अगर एक बार टूट गया तो जुड़े नहीं जुड़ता है यार। क्योंकि कहा ना, हर रिश्ते की नींव होती है यकीन। और इस तरह से आप किसी को गहराई से जान सकते हैं। फिलहाल वक्त गाने का है, शो इश्कबाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

ऐ काश के हम होश में आने ना पाए, इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्लां। बातें चल रही हैं कि कैसे अपने रिश्ते को गहराई से जाने। कहते हैं कि जब किसी से प्यार होता है तो उस पर आप पूरा अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन अधिकार तो जमा रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जान लीजिएगा कि अधिकार के चक्कर में कहीं आप उसकी आजादी तो नहीं छीन रहे। जिसे भी आप प्यार करते हैं उसे आजादी देना बहुत जरूरी है। अगर वो आपका है तो आप भले ही उसे कितनी आजादी दे दीजिए, वो हमेशा आपका ही रहेगा, हमेशा आपके पास ही लौटेगा। तो इसीलिए रिश्ते में ना आजादी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसकी आजादी छीन लेते हैं तो यकीनन उस रिश्ते का अंत हो ही जाता है एक दिन। और साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन गैप होता है ना, उसको भी आप फिल कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने पार्टनर को गहराई से जान सकते हैं, रिश्ते को गहराई से जान सकते हैं। और अपनी बातों को मैं विराम दूंगी क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गई है, और मैं ऐसे ही खास से टॉपिक के साथ आपसे मिलने वाली हूं। लेकिन अभी दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: अपने बैंक या डिजिटल खातों के बारे में किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी ना दें। किसी प्रकार के मैसेज या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा भाई।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूं भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
6: झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: मोरने

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी, सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाए और अपनों की हंसी को बचाए। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली 0.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
1: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसी हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: गाना बजा दूं।
1: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
2: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
5: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
2: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
5: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
5: इरशाद,
2: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
5: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
2: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
5: ये बात तो सही है।
2: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
5: कैसे कैसे?
2: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
5: अरे यार, वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
2: सुनो सुनो,

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना सा है तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: आहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
2: हाँ,
0: पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: शादी का इरादा है,
1: शादी
0: का इरादा है,
1: शादी ना पापा ना,
0: मगर क्यों,
1: शादी तो बर्बादी है,
0: क्या कहती
1: हो जाती आजादी है,
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय,
0: सुनो तो
1: मोना,
0: सुनो तो सुनो तो,
2: आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: इसलिए।
1: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए,
0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: उचित भी तो क्या हसीन रात है।

0: मुस्कुराई
1: पहले जरा मुस्कुराई
2: पहले जरा
3: कभी ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
4: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
3: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
4: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
5: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
6: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, क्या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

उमुराया मारे गिल घुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े उमुराया मारे गिल घुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: सुनो सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: दिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: मुश्किल

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: भेजा सरकार
1: ने। थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
3: अच्छा है, अच्छा।

0: सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: किया है?
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो।
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: से आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है।
1: सत्य है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाश में हो जाए।
0: इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गुरु प्रेमानंद जी के विचार।
2: एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जैसे हित हरिवंश विचारी के मनुज देह गुरु चरण गए, सकहित सब परपंच तजी कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो इसमें सार क्या है? यदि भजन नहीं हो रहा तो आप निशा, व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रिप्यामी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो? जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है, मलिनता को लिए हुए विचर रहा है, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद भगवान की रस में डूब जाए। तो कैसे इससे हम आगे बढ़े? माया प्रपंच से कैसे आगे बढ़े? हमारा मन तो बड़ा मलिन हो गया।

तो फिर आपको जो स्वाद मिलता, फिर आप कह देते पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, निस दिन बढ़त सवाय। उपदेश दे देना, मंत्र दे देना कृपा का लक्षण है, आपके ऊपर कृपा है इसलिए मिल गई। लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश, मंत्र, नाम और शासन और दुलार, इसके द्वारा हमारे मन को अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है, दूसरा नहीं। हरि आपको डांटेंगे नहीं, हरि तो बोल दिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम करोगे भोगोगे, लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं, करो तुम भोगेंगे हम, चिंता मत करो, ये बात कहीं नहीं मिलेगी। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, मां प्रभु हरिवंश गुरु है, गुरु हरिवंश क्या कह रहे, तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी, ए शरणागत तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का, अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे मैं उसे भोगूंगा, तुम चलो श्री जी के पास। ये त्रिभुवन में ऐसा दयालु कोई नहीं गुरुदेव जैसा, वो हमारे क्षुद्र दोषों को ना देख करके अपनी कृपा से हमें वो महान रस देते हैं जो किसी साधना से नहीं मिलता है। अगर गुरु सानिध्य मिल गया है तो प्रमाद मत करना कभी, बहुत बढ़िया अवसर मिला है निकल जाओ, आपको विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी। नौका में बैठे हो, हिलो डुलो मत, उसका बैलेंस मत बिगाड़ो, यद्यपि डूबेगी नहीं, अविनाशी नौका है, पर तुम भयभीत हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। नाविक बड़ा खिलाड़ी है, उसको कोई परेशानी होने वाली नहीं, नाव सच्चिदानंद में वो डूबेगी नहीं, तुम परेशान हो जाओगे, नाव में बैठे बैठे तुम घबरा जाओगे, तुम भयभीत हो जाओगे, तुम अशांत हो जाओगे। अपने हृदय में एक बात ठान लो, देखो जीवन तो लोग तुच्छ चीजों में दे देते हैं, पता नहीं कैसा तुम्हारा व्यापार है, कैसा तुम्हारा बुद्धि का विचार है, एक साधारण संबंधों में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो आप, पति पुत्र परिवार नाना प्रकार के, एक एक में अपने जीवन को न्यौछावर कर देते हो। प्रियालाल की शरण में आने पे तुम्हें डर क्यों लग रहा है, वो तो निर्भय है, इनकी शरणागति का स्वरूप ही है निर्भय, निश्चिंत, निशोक और सनातन हमारे अंशी हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। बहुतों को प्यार करके जीवन का जीवन दे दिया, एक बार इनका पाणिग्रहण स्वीकार करो। देखो आप लोग पाणिग्रहण स्वीकार करते हैं, कैसा भी हो जीवन निर्वाह करते हैं, इनके तो वेद यश गाते गाते थकते नहीं हैं, ये तो अजान बाहु अभेद भुज दंड मूल है, इनके हाथ में हाथ देने में तुम्हें क्या परेशानी हो रही, चाहे जितना भटक लो अनंत जन्मों में विश्राम तो यही मिलेगा, के काहे को लंबी यात्रा करोगे, इसी जन्म में विश्राम गृह में पहुंचो, श्री वृंदावन विश्राम, महाप्रभु कह रहे हैं विश्राम स्थल कहां है, श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के समीप। जब हम विचारधाराएं देखते हैं तब लगता है तुम समर्पित क्या हो, शरणागत क्या हो, हम श्री जी के आश्रित होने के लिए व्याकुल हैं, श्री जी से मिलने के लिए व्याकुल हैं, ये तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। अपने लोग तो विषय भोग के लिए व्याकुल हैं,
कहलाते हैं।